मखल मचल की तोंगान तोंगान बे थोड़म सिंह ताबिरी बसे आकाशवाणी इंफाल की एफएम संगाई चैनल ने हाउसिक पंखम से दलांतुक शरी लेबांग निंग बैसे निकक मतंग मतंग हुई ना कुदोल की आहन बे ताबिरी शरी सोरो काइबम गांठोई जनु ने सकपा टिकचम बिकोम दासना सही रिंग बा लेबांग निंग बैसे

0: कना कना लेगे नहीं तारी बिरनो ही बो
1: ओ तारी तारी नशा न पीने साल वन घर बने
0: खबर नहीं तो रुचिना करी करी पाओगे और ही बा यारों यारों शबिराय न शबिराय है दुनी ने तो रुचिया हाँ ले बाग सी इरांग नेम भी यारों ही दौड़ी बो मामा
1: करी ये मुक्त और गेम हो ही बा
2: बाबा
0: हाँ हाँ के दौड़ा
2: चाह हो रंजगा इंगों द टाइम न भी यारों

0: संगो में आम अम्रे
1: ईशान बोल लो गला दी पारी पहाओ द हाउ इदा थुम दंग ठाक कर लोए रे ने हा
2: कहीं नो आई ने हंग बदी खुम बीते मसान पीछे आगे वारी रोम द उंजन ग्रे ने अमो कहीं नो बाले बाकी रंग नियम नो जोड़ी हाई जुड़ बो
1: ओए कोई की भारत की लेरी बच्चा न पथाम न पी बाप मियो भाई कोई की हक से लान लान हे हेक सी न भयाउ रे अदु की वानी दा
0: अदु ब्रो बाबू आ हौजी बाबू ना हाई की बा चना पथाप हाई बवा हाई दो खबर द कासु हे हे इबा तोय न थेंग ने बा सिबु कई हाई नो बाबू
1: हे मा लेंगाक लोन की मरम द इबा लाइरिक संविधान हाई दना अम लेबी ये
0: आ
1: हाई रिबा संविधान असिदा निंग तम न हिंगलीबा भारत मचा सिंग न फंगफम थोकबा हक अमदी पांगथोक कदबा मरु ओइबा थौदांग मसी मसीनी हाइबदो पीरी मधु सिंग दोनी चन कांगलो नाइन हाइरिसि को
0: मियोय बगी हक हाइरिसिबु कहिनो बापाबु कमाइन तौगेबा
1: कोरी नो ने शाय बे मसीबु गसी दि हेक तखल एने तौरिसि दे हा हंगबजु हंगो अलो चा थकबदु काउनु है इंग्र दि हाउदम
0: होय बापु
1: से से से तारो से बाय गेसे
0: आ
1: ताइबंग मी हाइबाय खोय से हेक पोकलक पदा निंग तमना मी अमगा अमगा की मरकता खेना बा अमत्ता लेता न पोला इकों अदुबु इंगोई मापान थोंगदा जाट कुचुगी खेना बती अदुमगले अदुए रसो ऐ कोई खुदिंग मक्की थमोई दीने अमत्ता ने माने को अदुना मशा मशा की मटिक मयाई नाक ना कनागी सु मखा पोंदने हिंगबा पामना बा नाक तनी है बनी था
0: ओ अदुए रे हक हाई रिसे
1: ना इकोन है हाई रखी गेने ता गोने असिगुम्बा मियोय सिंगसिना पुन्न हिंगमिनबा निंगतमन लैबा मानव थाकता अमदि इज्जत लैन हिंगबा हैबसे मियोय बगी याम नमरु ओइबा हत आइदि हौरकफम पोकफम शाटफम अदगी लोन लाइनिंग लाइशोल मानदबा मी अमगा अमगा गी मरकता खेनबा थंबा यादे आइन हाइबदि सन कांगलोन गी मियेंग ददिने मी खुदिमक जप माने मराल बु लैरबा मिशम दगी मंत्री फावा चराक फंगदोरी बने
0: को
1: कनागुंबा अमना मी अमबु मरम जादन तमथीना ओट दैबे यादे मिनुंगसी याउद बमोंग दा चराक पी बसु यादे यादे हाइब चनरोल सीए द इदुना अदुमक लेरी बने को अदुबु मसीगी ओन तैन बदा पांग थोक न बथौदो वाथो की पाउदी अदुमक तारी उबसु याउरी अदुगुंबा उन्हें तो इन्हें बतो अतु थोक तो ना बा एक कोई खुदिंग मक मियोई बगी हक की चन कांगलोन सिंह से खंग दबनी नाक दबनी चन पथाप सिंह से की मायोक ता कनागुमन सिंह ने रख लबदी मधुबु मायोक ने कदबनी अतः इलायरी चातुं बिया नंबु करीगुम बता नेल्सन मंडेला है बा मी अमगी ममिंग ताखर बरो
0: ममिंग बुझी ताखर पाबु अदो कई गिनो पाबु ना मियोई बगी हक की वारिस हाने गे दा नेल्सन मंडेला की मम्मी का मुप्पा ले इसी बा
1: मरम ले इतना हंगी मीने
0: ओ
1: इपा है किसे मुन्नताओ को
0: आ
1: नेल्सन मंडेला है बनु पासे मियो इबस जाती की मरकता खेना बत थंबा आयन बु सिंग न दना अकन बा यहू हो की बा नुपा अमने को
0: आ
1: महाक से खा अफ्रीका मियाम की लू सिंग बनी महाक न हो न की बस सिंग अदु बु खंग भी दना मालेम की थाकता लेमजनिंगाई ओइरबा मना नोबेल पीस प्राइज पी की मंगोंदा
0: अस अजदी पाबुआ आईदी नेल्सन मंडेला गी वारी दु मोइन तानिंगे बो अम तली बियु बा
1: हा मसी गी वारी सिदी याम सांग्रे अदु इशान तानिंगी हायरबनी ना पातेन तक न लीगिसे
0: होय पाबु
1: इंगोय खा अफ्रीका हायरि बलेबा कसी कुचु मुबा अमदी अंगोब मियोय कांगलुप अनिमक ना पुन्न लेबलेबा को तसेंग बदी लेबाक से कुचु मुबु सिंगना लेंगाक लिंगदुना पानजेबनी अदुबने ख्रिस्त कुमली सिंगमगा चमापन ताराद यूनियन गवर्नमेंट ऑफ साउथ अमेरिका सेम खिबदगी दिने यूरोप की अंगोबा जाति सिंगना हाइबदी मतम अमगी ब्रिटिश सिंगना अमुबा जाति सिंगबु खुदुम सचिनदना लेंगाक थौदागी थबक पुनमक पुरमे
0: बाबुआ इंडिया द ब्रिटिश ना पालमबा दुगुमब्रा
1: मदुदगी बुखर हेंजन बैदानी दाई बी
2: अस है भी रोक जाऊगे वारी से फन दुम नुआरी साइद तुम्हें सूम ताजरीबने
1: हाईरकदरीबनी है नुआब नीने खाजनबद कानी इमो ब्रिटिश कमदौगे है।

0: ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभापति ओइदुना नीति आयोग की 13वां सभा गवर्निंग काउंसिल की मिफम असी न्यू दिल्ली की राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर पांथोकलगनी मिफम अदुदा कुमजा 2028 फाउबुगी मनुंगदा भारत पु चौखलब लैबाक अमा ओहेनब मखाताना पाइखतकदब थबक थोरम सिंह खनगनी एंटरप्रेनरशिप थबक पीबगी सांग हेंगर हनबा हक्सेल मची ओइब चिंजाक चाब अमसुंग हक्सांग फने हिंगबा अमदी इजत लैने हिंगबन सिंगबगी मतांगदसु मिफम अदुदा खनगनी फीफा वर्ल्ड कप 2026 अहिंग नोंयाई मतुंगदगी यूनाइटेड स्टेट्स मेक्सिको अमसुंग कनाडा दा हौरगनी टूर्नामेंट असी लेबाक अहुम असी की तोंगान तोंगानब शहर 13 ता पांगथोकनी अहानब मैच इराय नुमिता ग्रुप ए की मैच अमद मेक्सिको की सिटी स्टेडियम दा मेक्सिको गा साउथ अफ्रीका गा सानगनी अनिसुब मैच नुमित असीमक्त दा मेक्सिको की शहर जपोपान दा साउथ कोरिया गा सेकिया गा सानगनी मथंग था की 13 फाउब चथगदब टूर्नामेंट असी दा अहानब ओइन टीम 94 सरुक यारी मसी हानदी टीम 92 सरुक यारंबनी 35वां थौबाल डिस्ट्रिक्ट लेवल इंटर स्कूल सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल टूर्नामेंट 2026 वांगजिंग कोदोमपोखी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स दरंगदगी हौख्रे टूर्नामेंट असी दा सही 17 मखा की नुपा मचा की टीम 5 सही 15 मखा की नुपा मचा की टीम 4 सरुक यारी ngasi phongba pause singi maroiba pause singi damak hauji khaidem gi chandra leire gi chandra
2: thagchiringan thoi mapham khangdena lareke ba naga micham oigeni singna ba haksang taruk phangkhe ba gi pau khoi chaung narba miyam le irang hauki ba amadi elevated highway gi sel thadok bina ba chief minister na union transport and highway minister nitin gadkari da haijak re haiba pau yaung na tongan tongan pause singa ngasi manipur da phongba pause singi han ba lamai da maroiba pause ngoi na phongnari पाउसिंग से संगा एक्सप्रेस मणिपुरी इंग्लिश एडिशन पोंगना फ्रॉम पीपल्स क्रॉनिकल सनालेबाग हुएलन पाउ मणिपुर मेल कैनफ्यू मेल तमिलोंग टाइम्स हिल्स हॉर्नबिल एक्सप्रेस पाउसी अहम लमाई मरुएब पाउसिंग फोंगली नागा मिशम तरुक के असी हक्सांग फंखिब थौदोक सेम मिनिस्टर ने यानिंगदब फोंदोखिब की पाउ पीपल्स क्रॉनिकल के अनिसुब हेडलाइन तौरी कोकी 13 हिंग थादोखिबगा एस एफ चामरी यांखैरोम ना पुंग 20 चुपना थीबदा नागा तरुक सीन फंगने हैवसने सनालेबक पाउसे गे अहान भेलाइन तौरी पाउ असी पाउसे अयांबगी अहान बलामाई द तोंगान तोंगान मुमोंग द हेलाइन तौदुन फोंगनरी एलिवेटेड हाईवे गे सेल थादो पिनब हाइजखरे जेजे मिशन 2.0 गे थबक थोरम सिंग लेंगा न सवतकेन हैवसने सनाल एक्सप्रेस मणिपुरी अमसुंग इंग्लिश एडिशन गे अनिशुभ हेलाइन तौरी नागा ताब मफम सिंग द यूएनसी न पुंग 20 गे शटडाउन लाउथोकरे हैवसने पोंगफम पाउसी के अनिशु हेलाइन तौरी पाउसी गानफ्यू मेल तमिलोंग टाइम्स हिल्स हॉर्नबिल एक्सप्रेस के अहम लमाई फोंगली आरंभम सोमरेंद्रो लेखिदब की कुंतरुक सुब निंग कुमोन पांथोखिब की पाउ सनालेबाग पीपल्स क्रॉनिकल यावना पाउसी अहमगी अहम लमाई फोंगली सी आर पी एफ की डी जी की वाफम मीब की वखल चेंदब वांगने हाइब पाउ पाउसी अहमगी अहम लमाई मरुब पाउसी फोंगरी जून 15 लौमीद फर्टिलाइजर ऑर्गेनिक हार फंगलगनी पाउ हुएलन पाउगे अहम लमाई फोंगली नानथोय
1: थागचरी की चंद्र अरोबद मरुब पाउ नागा मिचम ओरमगनी चिंगनब पुमथरब हक्सांग तरुक इम्फाल यौरखरे मुख्यमंत्री ने मिहत असिब कन्ने यानिंगदो फोंदोखरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हायरी लेबा असिगी मियोय कोटी 140 गी अनिंग पामब थोंगनब माकी सरकार ने लेप लेतन होनरी अमसों फीफा वर्ल्ड कप 2026 ngasi ahing nongyai matung dagi United States, Mexico, Amsung, Canada da hauragani Paulo Jere.

0: जब खुगी था खुदिंगी थमजरी बा मतमगी ई पाव हरिब धरमसिदा अमदी आकाशवाणी इम्फाल स्टूडियो द तराम नोकचरी
1: थगचुरी राहुल बो
0: ओजाय खुई तोवान तोवान बा थौदो के आम थुई अदुबु लोइन कोनसिन दुने नेने बुदि गम जेदबनी ना एखै कम्पिटिटिव एग्जाम द खरा मायोन पिजेरगा थमजरी बा थरमसिगी अहान लखुचनिङि बा हिरमसे रशियन ऑयल इम्पोर्ट छे हंदक इंडिया दा खंगेन हेंगलकपा अदुगा यूएस की शेयर्स तारकपा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ना फोंग बा दाता आमगी मतुंग इना वेस्ट एशिया क्राइसिस असगी चेरक छिदा अप्रैल था दा ऑयल बिल लेव से यूएस दा 2.9% ने फोंगे अदुगा वॉल्यूम देना 3.8% ने फोंगे अदुगा रशिया दा ला अकांदना मु 37.7% बिल दा अदुगा वॉल्यूम देना 34.3 हाइना समाने थेंगने जे मसीगी डेवलपमेंट से जागम येंग द कमाइन थम बिबे
1: राहुल इनर्जी यौग दी याद दमनी ना ओजे अखोना रिन्यूएबल इनर्जी दा मायोन ओनशन अब होनर कछु बा
0: होय
1: खगी हान ये सिनरी बा फॉसिल फ्यूल गी इनर्जी सोर्स है मसी मदी खोय खुजु बा बा थादो पंगमरी पाक्सन ने जिपु बु मसीनरी
0: होय
1: मसी चोक प येंग दी खोय इंडिया दा लक्चर बदा इंडिया मसासी मिया मनी ना दरकार यम लेबा
0: होय
1: जनरली इंडिया गी मागी मथौ ताबा सिगी सामद मरफु मगा 85% लोम सिदी खोय अदुम अयामबा इम्पोर्ट तोर लाखपने
0: होय
1: अहामबदा 2022 की ममांग से मसीद चौक पले रमसी कोई मिडिल स्टल सप्लायर्स
0: होय
1: इराक कुंबा अदेगी सऊदी अरेबिया कुंबा अखोई की सोर्स एम्बला में ऑफ कोर्स अमेरिका देशु

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सगनाई रब्बी मणिपुर की मतमिसे में दी फिल्म से की सेसक पी सुनीता ने प्रम की काउंगम लरोई दब इसे सिंगी मनुंगा देवदास फिल्म की सेसी सोमनी देवदास फिल्म दगी लखोसबे इसे में तंग कुरोल तमजरी

आकाशवाणी इम्फाल की मणिपुरी मतम इसेगी सही सक पी सुनीता ने प्रम ना सक पा इसे सिंगे लगता जोड़े संदर्शन समना सही रिंग बा इसे मतम खुदोल तमजरी तमिनसी

0: प्रशिक्षण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी इम्फाल के FM संगाई चैनल दिगिने हौजिक पुंफम असिद पुजरकली गुड आफ्टरनून लेडीज लाइव फोन इन प्रोग्राम थौरम असिद लमदम असिगे नुपी ओइबी सिंगना एखोइगे स्टूडियो के टेलीफोन नंबर 8798803293 हाइरिबो नंबर असिद फोन तौबिरकतुना मयाम पुन्ना खंगमिनबो याबा वाफम सिंग फोंदोपिरौ थौरम सरुक याबियु। आहान बा फोन ओक्चगे हेलो
4: हेलो
3: कना ओइ बिरो बनो
4: मैडम आई नंबर क याय दगी वाहिम बम रानी मैडम
3: रानी करी वाफम पुखत पिगनी नसी गुड आफ्टरनून लेडीज के थोरम सिदा
4: मैडम आई नसुम खंजे बगी वाफम नि को ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯥ ꯏꯁꯥꯅ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯀꯟꯅ ꯁꯨꯔꯒ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕ ꯉꯝꯅꯕ ꯏꯁꯥ ꯏꯁꯨ ꯁꯦꯝꯕ ꯉꯝꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯁꯤꯁꯨ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯀꯣ
3: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ
4: ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩ ꯈꯛꯇꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯕꯒꯤ ꯈꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯃꯥꯡꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯏꯁꯥ ꯄꯩꯁꯥ ꯌꯣꯟꯗꯅ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯀꯥꯟꯅꯖꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯤꯒꯤꯗꯤ ꯃꯆꯥ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯥꯡꯉꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ
3: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ
4: ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯒꯨꯂꯤ ꯅꯨꯡ ꯌꯣꯟꯗꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯋꯥꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯌꯥꯎꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯃꯐꯝ ꯑꯌꯥꯝ ꯑꯌꯥꯝꯕꯗ ꯁꯨꯝ ꯄꯥꯎꯏ ꯇꯥꯕꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯗꯗꯅ ꯃꯦꯗꯥꯝ ꯑꯩꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯅꯤꯡꯗꯅ ꯇꯧꯕꯅꯦꯕꯀꯣ
3: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ
4: ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯦꯗꯥꯝ ꯑꯃꯅꯅꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯆꯥ ꯆꯍꯤ ꯁꯨꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯆꯍꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯁꯤꯛꯁ ꯁꯤꯛꯁꯇꯩꯅ ꯅꯥꯏꯟ ꯐꯥꯎꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯇꯦꯟ ꯐꯥꯎ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯒꯥꯔꯤꯗꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯒꯤ ꯒꯥꯔꯤꯁꯤꯡ ꯄꯨꯔꯒ ꯁꯨꯝ ꯆꯠꯂꯒ ꯍꯧ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯆꯠꯄꯁꯦ ꯃꯁꯦ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯅꯕꯨꯗꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯗꯅ ꯏꯆꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯅꯦ ꯅꯥꯄꯤꯔꯤꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯆꯥꯗꯣ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯗ ꯑꯦꯛꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯗꯣ ꯋꯥꯈꯟ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯑꯦꯛꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯣꯏꯕ ꯉꯥꯝꯕ ꯌꯥꯎꯔꯒꯗꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯁꯤꯡꯗꯣ ꯃꯣꯏ ꯋꯥꯈꯟ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯆꯥ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗ ꯒꯥꯔꯤ ꯄꯤꯁꯤꯟꯕꯤꯗꯕ ꯆꯍꯤ ꯁꯨꯗꯕ ꯑꯉꯥꯡꯅ ꯒꯥꯔꯤ ꯊꯧꯔꯒ ꯃꯣꯏ ꯃꯁꯥꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯤꯒꯤ ꯆꯨꯝꯅ ꯆꯠꯆꯕꯗ ꯐꯥꯎꯗ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯤꯌꯦꯕꯀꯣ ꯃꯦꯗꯥꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯁꯦ ꯑꯉꯥꯡꯗ ꯒꯥꯔꯤ ꯁꯤꯟꯅꯕꯤꯒꯅꯣꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯦ ꯃꯦꯗꯥꯝ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯇꯦꯟꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ
3: ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯔꯥꯅꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯅꯤ ꯄꯨꯈꯠꯄꯤꯔꯝꯃꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯃꯥꯖꯁꯤꯕꯨ ꯃꯥꯡꯍꯟꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡꯗ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕꯤꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯍꯤ ꯁꯨꯗꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗ ꯒꯥꯔꯤ ꯁꯤꯟꯅꯔꯒ ꯊꯧꯍꯟꯕꯁꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯅ ꯀꯨꯞꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯕꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯅ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤꯔꯥꯅꯤ

0: हेलो
1: हेलो
0: कना ओ बीरो बनो
1: हेलो
0: कना ओ बीरो बनो ताजरे हेलो हेलो
1: तो
0: ताबीरो ब्रा
1: ताजरे
0: ताबीरे को हाइबियो का मिंगले फॉर्म तंग हाना हाइबियो ꯍꯂꯣ
1: ꯑꯝꯇꯪ ꯇ꯭ꯔꯥꯏ
0: ꯇꯧꯕꯤꯔꯣꯀꯣ

धन्यवाद मेरीना। यह आकाशवाणी इम्फाल का शंघाई चैनल है। 103.5 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतमाला। मैं वाईकॉम सिंह खिंगानबा अपने सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आपकी सेवा में प्रस्तुत है सदाबहार गीत। ये वो गीत है जो समय की सीमा से परे हैं और अपनी ताजगी एवं लोकप्रियता के लिए याद किए जाते हैं। कार्यक्रम का पहला गीत प्रस्तुत है फिल्म दिल अपना और प्रीत पराये से लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीतकार है शैलेंद्र और संगीत शंकर जयकिशन का।

अगला गीत प्रस्तुत है फिल्म शोर से लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। गीतकार है संतोष आनंद और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

अभी आपने सुना फिल्म कागज़ के फूल से गीता दत्त का गायक गीत, गीतकार कैफी आजमी और संगीतकार सचिन देव बर्मन। साथियों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी इम्फाल के शांघाई चैनल पर प्रसारित कार्यक्रम गीतमाला। अब सुनते हैं फिल्म वो कौन थी से लता मंगेशकर का गायक गीत, गीतकार है राजा मेहंदी अली खान और संगीत मदन मोहन का।

अगला गीत सुनते हैं फिल्म अभिमान से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में। गीतकार है मंजरू सुल्तानपुरी और संगीत सचिन देव बर्मन का।

कार्यक्रम की आखिरी पेशकश फिल्म कश्मीर की कली से मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में गीतकार HS बिहारी और संगीत OP नैयर का

साथियों इस गीत के साथ हम आपसे लेते हैं विदा अगले कार्यक्रम की प्रस्तुति के लिए हाजिर है मेरीना ओइनाम अब हमें दीजिए इजाजत नमस्कार

आकाशवाणी इम्फाल हौजिक लांथोक्चरी अरीब मतम इसई सिंह मथंग मथंग ओइना खुदोल यहानबदा तामिनसी अरीबम तोंबिशना शर्मा की खोंजिलदा बी जयंत कुमार शर्मना सैरेंगबा मतम इसई अमा फैरा थक के खोंगु मेले पामेलुशाद सैदांगले हकना ओइना चाउरनु उतांगबिनी हाइनखिनी

0: हेलो
1: हेलो
0: कनाओ बिरो बनो
1: तो जरा इधर इतिहास का नंबर लुआंग राइजिंग टेंपरेचर समझ में था उस तो कंप्लेक्स नहीं मैं
0: इतिहास राजेंद्रा करी इसे नो तमिल नगर दबसे
1: इन थोड़ा भी फिल्म के कनाओ के एक उसरा निका नॉन तो मुझे मिल नगा करी दो करी मातो नो तो वो सही तो मकान
0: सही सक पे मम्मी दो कहीं है भी बा Saisak pa sing gi maming do kay haibi bano.
1: Ning mam tom ba ka e ke usara ni ka sapa. Ingo lo bilang gi.
0: Thamoi
1: corona thareng ba du ka sawon ti gen rana music direction ti ba.
0: Ya marik chum na phajana haibi re thamoi kan mali haibi ba isai si wa ga doi ne.
1: Kan mali. Ni ti kan man de en ta bu.
0: Isai mate ama so lan thok pi re target pa phong dok jari isai se kudol tam jara ge me am puna tamina re se.
1: Ya mo ai ga.
0: Thaga jari.

0: हेलो हेलो हेलो
1: हेलो मैडम मैडम
0: ताजरे कनाई बिरो बनो होय
1: मैं इलाज का कहूँ जमने आन ठंड के
0: होय इनाउ चा करी सही तमीन से क्या
1: पाकिंग की लेन फिल्म देखी ना अनो बोले से ना पिजंग खन ना तो वो सही जो लो ताजे नहीं बा
0: होय मपुंग फा ना कि तंग सांग ना सकला देनु आइ गदम ने
1: इदान जाम सक तो दिस जति छै बि आम पाम जाब
0: होय होय
1: मैडम तुंगा छि फोन जे इनी हो रीडिंग चली देव
0: ꯇꯦꯟꯁꯨꯕꯒꯤ ꯃꯌꯦꯛꯇ ꯇꯣꯅꯤ ꯑꯍꯩꯕꯝꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯑꯔꯕꯤꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯤꯇ꯭ꯔ ꯄꯥꯡꯉꯝꯕꯝ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯁꯩꯁꯛꯂꯤꯕ ꯋꯥꯛꯆꯤꯡꯒꯤ ꯂꯦꯟ ꯐꯤꯜꯝꯗꯒꯤ ꯏꯁꯩꯅꯤ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ

नारोल खुंजल ताबीरे थोरम सदुकना तहन जरी बसी आकाशवाणी इम्फाल की एफएम संगाई चैनल देगी ने हौजिक मखा तारकपा थोरम सिंह कंगना चैनल देगी मिकुखरी मनुंदा ताबा फंबी रगनी।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: मणिपुर सरकार की डायरेक्टोरेट ऑफ हैंडलूम्स एंड टेक्सटाइल्स ना स्टेट अवार्ड लिसिंगनी कुंतरुक कुंतरे की दमक थवाई यावा हैंडलूम वीवर्स अमदी हैंडीक्राफ्ट आर्टिसान सिंह देगी दरखास कौड़ी एप्लीकेशन फॉर्म डिस्ट्रिक्ट हैंडलूम्स एंड टेक्सटाइल्स की प्रोजेक्ट ऑफिसर की ऑफिस नत्रगा विभाग असी की वेबसाइट www.dhtmanipur.com नत्रगा www.dhtmanipur.mn.gov देगी डाउनलोड तो यागनी वीवर अमदी आर्टिसान सिंह मेंशन लेबर फॉर्म डिस्ट्रिक्ट हैंडलूम एंड टेक्सटाइल्स ऑफिसर्स सिंह द पिसिल लेबर यागनी मेंशन लेबर फॉर्म चाहिए ऐसी की जून कुंठा पाव द पिसिल नबा हैंडलूम एंड टेक्सटाइल्स की डायरेक्टर एलांगबम जितिए न थोपा चेरोल अमना खंगल लगली
4: हौकीब कुमजाली संगनी कुलहुम दोइगी जुन तराहुम दोइदा इंफाल ईस्ट की नोंगशुम द थोकीब थौदोक अमदा ओक्सु निंगथेमसा खुलदगी मियोय अहुम युमनाम सुरजित कुमार मैते लाइश्रम सुरेश मैते अमदी मोयरांगथेम हेमंत मैते ताइबंगपाल थादोखी लागली बजुन गी तांग तराहुम दोइ थांग जनुमित अयुक की पुंग मापन ताब मतमदा थवाई अहुम सिगी दमकता हाइकत लेकत तंबगी थौरम पांगथोकचगनी थौरम असिदा मयामन सरुग याबियो हाइना इमुंग मनुंग अमदी कॉन्वेनर बिले प्रोटेक्शन कमिटी ओक्सु निंगथेमसा खुलना पौजे लगली।
5: आकाशवाणी इंफाल हौजी निमिदागी पुंग तारीन मखाई टारक पगलोनिना मणिपुरी दा पाव ताब फंगिरगनी।
6: आकाशवाणी इंफाल वहेंगबम राजेश ने पाव पाजरी आहनबदा मरुएब पाव विकसित भारत की मंगलान मंगफाउना नब होनबदा केंद्र अमसुंग राज्य सरकार पुनः थबक तौमिनबगी तंगाई फदबे लई हैना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाइरी। म्यांमार दा सरांगनब थोकलिब असिगी येंगलगा गंखै परिंगदा ड्रग अमसुंग खुलाई ललोनब थिंगनबा ngak सेनबगी थबक अंगरनबा मुख्यमंत्री युमनांग खेमचाना केंद्रगी पुंगनिंग चिंचिनक्रे नागाताब मफमसिंगदा यूनाइटेड नागा काउंसिलना कौकीबा पुंग कुनमरी की सटडाउना मियांगी मौसागी पुंसिदा चाउना अपनब थोकले। इंडियन मेट विभाग ने हाई अवांग नोंपोक भारत अमसुंग सब हिमालयन वेस्ट बेंगल की मफमसिंगदा लाखलिब सेवल असिगी मनुंगदा नोंकन चुगनी अमसुंग यूनाइटेड स्टेट्स मेक्सिको अमदी कनाडा ने युंबु ओइदना फीफा वर्ल्ड कप लिसिंगनी कुंतरु ngasi अहिंग नोंयाय मतुंगदगी औरगनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी माले मसीद तंगदू लेता अमदी मरा सेतबगी फिवम अमर लेरबसु भारत थाजब अमसुंग अचेतब फिरेप का लोयनना मांगलोम दा तम तम चंगसिली। नई दिल्ली की राष्ट्रपति भवन दा नीति आयोग की तरह माथोई सुबह गवर्निंग काउंसिल की मिफम दा सरुक यारदना श्री मोदी ने हाई केंद्र अमसुंग राइजर सिंह ना अपुनब दायित्व लेना विकसित भारत की मंगलान मंगफाउना नबा भारत मांगलोम दा चंगसिली। प्रधानमंत्री ने हाई तेंबांग पीनब वारी सानब अमसुंग अमग अमग ताथोक तासिन तौना लेबाक असिगी मंगलांग सिंह अदु मंगफाउनबगी लंबीदा मांगलोमदा चंगसिनगनी। नीति आयोगना मसिगीदमक मरुएब थौदांग अमा लौरी मांगना हाई मियामदा थबक फंगनबगी तंजा पीबा स्किल प्रोग्राम सिंह पांगथोकतुना मियामदा वाखलोन सिंह पीबा नहा सिंहदा मगुल लेबा शिक्षा फंगनदुना लेबाक असिबु चप मानब मियेंगदा अमत ओइबा लिसिंगदा सेमगतनब थौरांग सिंह पाइखछि। भारत ने तोान तोान लेबा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सही तौर पोथो कुथोबगी चांग हेंगत पोथोक मपा थादोनबगी तंजा अमसु पांगले। लेबाग राज्य सिंगी तुंगी युम्बीदा अहेम मियंग चंगदुना इंक्लूसिव ह्यूमन डेवलपमेंट फॉर विकसित भारत एट 2047 हाइब हिरमदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभापति ओइदना पांगथोकिबा तरामाथोई सुब नीति आयोग की मिफम अदुदा केंद्रगी मंत्री सिंह नीति आयोग की वाइस चेयरमैन अशोक कुमार लहरी यूनियन टेरिटोरी सिंगी उप राज्यपाल अमदी राज्य की मुख्यमंत्री सिंह सरुक याखी।
7: Nai Delhi da pangthopa niti ayog ki mipham aduda saruk yakiba Mukhya Mantri Yumnam Khemcha na phongdokibida Griha Mantri Amit Shah amadi Kendra amasung Rajya Sarkar ge achepa thoksil ga loinana Manipur ge ain amasung shanti raksha ge phibam singtha ningai oina phagatle IDP singi khunda laitan bagi matang da mipham aduda wangang aduna Mukhya Mantri hai Kendra ge mateng ga loinana IDP singi resettlement and rehabilitation package mik ki makhada tangkak naina makoi bu khunda laitan bagi thabak chathari Chenba Sahi Lising Ani Kuntaruk Kuntariki Oina PMAYG Gi Makada Kendra Sarkar Na Ehen Bai Yum Lising Manga Sanaba Ayaba Pirakle Mang Nai Sarkar Hek Pai Badagi Lamdam Asa Santi Hanjilana Ba Hona Ba Kaknatana Raija Asita Kundari Ba Jati Kangrup Singh Gi Marakta Thajana Ba Hengarana Ba Thaurang Kaya Paikatli Myanmar Da Sarang Na Ba Thokpana Lamdam Asita Singh Na Ba Kaya Mayok Nari Ba Adugi Matang Da Wapam Singh Pongdol Oduna Shri Khem Chan Na Ngamkai Paring Da Ngak Sen Bagi Thabak Hena Kankhan Anba Surveillance System Phagat Anba Drug Kulai Amadi Mi Lo Lom Bagi Thabak Thorum Singh Gi Mayok Da Punna Thabak Paikat Minana Ba Tangai Phadaba Lai Hai Ki Mukhya Mantri Nai Bharat Myanmar Ngamkai Wang Madagi Drug Pusilakpa Amasung Ainiya Da Ba Mong Da Kulai Pusilakpa Thingna Bagi Damak Ngamkai Sambal Kha Bagi Thabak Kilometer Yangkai Loisingkre Kilometer Marfu Gi Thabak Haujik Haure Manipur Shanti Amasung Chokhat Parom Da Tapna Tapna Changsi Lagli Hairaduna Mukhya Mantri Nai Kendra Sarkar Amasung Niti Ayog Ki Matengna Biksit Bharat Amasung Biksit Manipur Ama Oinaba Pandam Thamli BJP Manipur Pradesh ki President Adhikari Mayum Sardar Debina Manipur ki Rajya Sabha Sadasya Oiragani Hauje Hauje Rajya Sabha Sadasya Oriba Maharashtra Laisenba Chana Jawbagi Thabak Paibagi Matam Thasi ki Kunma Thoida Loiragani Manipur ki Amata Ngairaba Sit Asiki Damak Srimati Sardar Debina Tana Atopa Mirep Amatana Chongthorokta Badagi Mahak Pungasi Manipur Vidhan Sabha ki Secretary na Mikhal Lasita Lamba Yaudana Mai Pak Lehena Laukthopaga Loinana Certificate Kusin Nakhi Naga Taba Mapham Singh da United Naga Council UNC da Kaukiba Pung Kunmari ki shutdown na Myang ki Mauksha ki Punji da Chawna Apan Ba Thokle Naga ki Miyoi Taru ki Asi Baksang Phangkhraba Matung da Misi Asi ki Matang da Achumba Wail Phanghangadaba ni Haiba Dabi da UNC na shutdown Asi Kaukiba ni Aikoi ki Senapati Paumi Eheki ni Hai Thokdok Adubu Yaning da Ba Phongdok da Ngasi Ayuk Pung Taruk Tegi Ayeng Ayuk Pung Taruk Phauba shutdown Kaukiba ni Miyar Adura Chenaba Miyoi Singh Phana Ba Amasung Kuki Militant Singh ga Sahi Taunari Ba Su Lokthok Naba UNC na Dabi Tauri Joint Tribes Council Manipur na Total Shutdown Sogot Paga Loinana UNC na Taliba Dabi Taruk Adu Kendra Amasung Raija Sarkar na Thabakta Onthokadaba Ni Hari Shutdown Asina Tamenglong Jila Gi Mapham Kyada Chawna Apan Ba Thokki Miyam Thoraktuna Lambi Da Gari Thingki Kaithel School College Sing Thong Hangkite Sarkar Gi Office Sing Da Mi Karp Gi Chang Nemki Maragasta Senapati Leba Naga People's Front NPF Manipur State Uniki Office Sakang Dabasingna Amangata Tholam Le Hari Thodok Adu Ngarang Ahing Nongyai Adwai Da Thokibani Hari Naga Misam Taru Asi Bhaksang Oina Phangkibagi Thokdok Adubu Coordinating Committee on Manipur Integrity Kokomina Akan Mamong Da Yaning Daba Phongdorokli Kokomigi Cherola Man Hai Mara Laijidaba Misam Myambu Pharba Matung Tamthina Hatpa Haibasi Miobegi Lichat Nate Mayor Asa January Basing Puthoktuna Ain Geba Matik Chaba Chera Pigadabani North East Students Organization NESO, All Manipur Students Union MSU, Communist Party of India, Imphal West District Council, Manipur People's Party, All India Trade Union Congress, Manipur State Committee, Bishnupur District, Rongmai Baptist Churches Council, Rongmai Scholars Association, Peace and Integrity Committee, Kiangai Amasung, All Kiangai Nupi Chakot Thorang Lupna, Miyoi Taruk Halambagi Thawdo, Adubu Kanna Yaning Daba Phongdorokli, Paogi Marathana Break Ama.
8: Diamonds Project Department of Pathology RIMS Imphal na breast amasung lung cancer na naraba patient singidamakta three molecular test ki khudong chaba pijari hairiba test nga dudi breast cancer gina ERPR HER2 noi amasung KI67 lung cancer gina EGFR mutation test amasung ALK ROS1 PDL1 IIC test Testing asigi mateng na cancer layang bada amasung targeted therapy da jauna mateng oigani. Akupamarol gidamag Diamonds Project Department of Pathology RIMS tatanabiyo.
9: Nupida amadi nupa singda toina naganba thyroid ki anaba makhal suna yengbaga loinana manipur da ahanba thyroid scan gi facility leiraba aoi babina specialty hospital thyroid cancer gi high dose iodine therapy gi khudong chaba pibaga loinana cmht pmjay health card amasung government employees sing gi su khudong chaba pizari doctor singna tumor board phamduna anaba sing gi layengda chauna mating pangli akupamarol gi damag nabh phanglaba aoi babina specialty hospital sajiva jail road khabai soi imphal east ta tanabiu
10: tabiriba pawasi akashbani imphal degine India Met Bivagna Awang Nongkok Bharat Amasung Sub Himalayan West Bengal Gi Mapam Sing Kerala Karnataka Amasung Tamil Nadu Gi Mapam Kya Da Lak Liban Numit Mangani Degi Tarit Ni Pau Ba Asida Nong Kan Chugani Hari Kerala Gi Mapam Kya Da Nong Chugani Haina Orange Alert Lauk Tokre Kerala Karnataka Amasung Lakshadweep Gi Samudra Khongban Sing Da Leiba Ngami Sing Na Samudra Da Nga Phaba Chatana Ba Khangali Leiba Gasi Gi Awang Nongchup Thang Ba Sarup Tana Thangja Numi Pau Ba Len Yauna Akak Arau Amadi Akan Ba Nong Sit Sit Kani Hari Amarom Da India Meteorological Department Imphal Center ki pau matungina rise si ki tongan tongam jila singda lagleba numin mangani asida akhak arau yauna nong churabe yai hari Imphal East Imphal West Thaubal Kaching Giribam Bishnupur Kangpokpi Churachanpur amasung Phetchol da ngasi amasung Haiyang akhak arau yauna nong churabe yai atai jila singda su ngasi degi hauduna lagleba numin mangani asida akhak arau yauna nong chugani hari Chenapati Jila ki Deputy Commissioner na National Highway 2 ki phibam yengsin kre nongju tha lakchingai mangoi na lambi asida sengot sagali ba thabak thorum sing Deputy Commissioner na yengsin ki bani khongsat aduda highway asigi mapham kya da khudak ta sengat pagi thangai tangai phadabai lei haina mahakna phongdok ki nongju pantha matam da lambi paring asida apan ba yaudna sathok sachin yanabagi damak NSI DCL da Deputy Commissioner na pauktak pi kre Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana Watershed Development Component 2.0 ki makhada Management Information System ki matangda numinini ki oba Rajya Thakki Training Program ngasi degi All Secretary ki Conference Hall da hokdokre State Level Nodal Agency for Watershed Management Manipur nasin ba thorum da wa ngangla duna Nodal Agency asigi Chief Executive Officer Dr. Rajkumari Sunita Debinhai Kendra ki Department of Land Resources ki portal da Management Information System changnai na update toba yamnamak tangai fadri Mangnai, Matamchana project sing mapungpana loisin nabagi damag, mari lainaba officer singa apiba matamda tabak loisin naba honagadabani. Griha mantra loina kangala pagi matungina, Rajagi home guard personnel, leasing a hum chohum marfudra mari, the hengat naba, Raja sakana paikaliba taurangi matanda, kangala naba high court na mari lainaba sing the kangan kre. Manipur home guard employee welfare association, tangalakiba, wakat amaga mari lainana, ngarang high court of Manipur ki justice, a Guneshwar Sharmagi court hearing chatakre. Maduda, Rajagi when a lady bo home guard masing asi sanction strength the henganaba, nauna siankiba kaksing amasung jiribam jilagi oina personnel summary loba amasung hangduna lariba posing menkanaba Raja Sarkana paikaliba thorang sing chayol ahungi manungda aiba oina pakum piraknaba khangan ki. Manipur Innovation Society Imphal na Maharas Borders and College gi IQAC ga kusam naraga special intensive revision SIR lisingani kuntaruki matangda nomoyeba miam punna khangmin nabagi thoromama college asida pangthokre thoromadu da IQAC gi coordinator Dr N Somorendrona ganatantra chatpar laibak amada nagarik singi adhikar amasung voter list yaunaba SIR tawbagi maruiba kayagi matangda wangangki Hauzik Chathari ba Special Intensive Revision ki saruk amoyna Bishnupur jila da BLO singna yumthong numthong changduna check tawba enumeration form piba amadi digitized tawbagi thabak thorum sing

केशोकुमार ओजाथे बराजेन ता सोदबी रूबी अमदी मरुपसिनी हतगी इसे खनबी दगिबसिना खोदा बिदि बेसे सिना खुत्सा नि फिल्म दगी अमरजीत अमदी सुस्मिता गे पुन खोंजेल दा खाइदेम इमोना सेरिंगबा अमरजीत लोरिमबमना सेरांग बिसे नि दा बिसे

0: 이사이 시단자 기부글로니 능가 시교니디 아카시반 인팔기 FM 상하이 시널기 더럼 산독서바 마땅하시대로 신자리 하이엔 이라이누 밋 준기 땅따라니 토이 잉아 타기 군타리니 판바 사카벨리 싱그마가 참아뿔 니푸리 팔기 누가이르바 더럼 기아글로니나 아두뭉아이저럼게 능가 시교니디 다비리바 푸나우키 모품대기 가이네야 탁니자리 비네비라시 자이힌
1: महीनों साथ रहती थी जब किसी का नाम डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा जाता था और उसे दुनिया से छुपाया जाता था। आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम हर सिंगार, जहां मोहब्बत आज भी धीरे धीरे चलती है, बिल्कुल पुराने गीतों की तरह। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसे गीत से जो शायद आपको किसी खास की याद दिला दे, बिल्कुल इस गीत की तरह।

पहली मोहब्बत अजीब होती है ना, ना वो पूरी तरीके से समझ में आती है ना पूरी तरीके से भुलाई जाती है। किसी की एक झलक और बस दिल को लगने लगता है कि शायद यही कहानी है। पुराने जमाने का प्यार बड़ा खूबसूरत हुआ करता था, क्योंकि लोग जल्दी इजहार नहीं करते थे, वो छुप कर एक दूसरे का ख्याल रखते थे। बस वही मोहब्बत थी। मुझे एक शेर याद आता है कि मोहब्बत में जरा सी सादगी रखनी जरूरी थी, वो दिल के पास रहते थे खबर होने से पहले। तो चलिए अब सुनते हैं एक ऐसा गीत जिसमें पहली मोहब्बत की हल्की सी मिठास है।

परसों एक वक्त हुआ करता था जब खत पहुंचने का इंतजार होता था। डाकिया आते ही दिल धड़क उठता था। कभी कभी सिर्फ दो लाइनें लिखी होती थी उस खत में, उम्मीद है तुम ठीक हो गए। लेकिन उन दो लाइनों में पूरा प्यार छिपा होता था। आपको पता है कि लोग इत्र लगाकर खत भेजते थे ताकि खुशबू में भी मोहब्बत पहुंच सके। आज सब कुछ तेज

लेकिन शायद वो इंतजार वाला प्यार कहीं पीछे छूट गया है। वो चिट्ठियों का दौर भी क्या खूब हुआ करता था, हर लफ्ज में किसी का इंतजार लिखा होता था। और अब एक ऐसा गीत जो आपको शायद उन पुरानी यादों में कहीं वापस ले जाए।

सच्चा प्यार शायद जल्दी नहीं मिलता, और जो मिल जाए वो हमेशा साथ रहे ये भी जरूरी नहीं। पुराने लोग कहा करते थे कि अगर मोहब्बत सच्ची हो तो कई बार वक्त भी हार जाता है। इंतजार मोहब्बत की सबसे बड़ी परीक्षा होती है, कभी स्टेशन पर, कभी किसी खिड़की के पास, तो कभी किसी की आंखों में। बस एक उम्मीद कि वो आएगा, ठीक इस गीत की तरह।

दोस्तों, हर प्यार मुकम्मल हो ये जरूरी तो नहीं। कुछ लोग सिर्फ कहानी बनकर रह जाते हैं। लेकिन सबसे अजीब बात क्या है पता है आपको? कि अधूरी मोहब्बत सबसे ज्यादा याद आती है। कुछ रिश्ते पुरानी किताबों जैसे होते हैं, पूरा ना भी पढ़ो फिर भी याद रहते हैं। तो दोस्तों, अब सुनते हैं एक ऐसा गीत जो शायद आपके दिल को हल्का सा कर दे।

तो दोस्तों आज की रात मोहब्बत की उन पुरानी गलियों में चलते चलते वक्त कब गुजर गया पता ही नहीं चला। अगर आपके दिल में भी कोई नाम आज अचानक मुस्कुरा उठा हो तो बिल्कुल बुरा मत मानिएगा। कुछ लोग याद बनकर भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। मुझे एक शेर याद आता है कि इश्क वो नहीं जो हर किसी से हो जाए, इश्क वो है जो किसी एक के बाद फिर ना हो। आपसे इजाजत चाहता हूं, फिर मिलेंगे एक नए एहसास के साथ। तब तक ये गीत सिर्फ और सिर्फ आपके लिए।

0: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: Governing Council की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
1: To youth, to working life, to old age.
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
3: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। से ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
0: भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सेटेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया। नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। भारतीय नौसेना ने यूएई के फुजैरा से निकले एक वाणिज्यिक तेल टैंकर से बिना फटे मिसाइल वॉरहेड को सुरक्षित निकालने का अभियान सफलतापूर्वक पूरा किया। ये मार्शल आइसलैंड के झंडे वाला टैंकर एमटी ओलंपिक लाइफ ओमान के पास 26 मई को हुए विस्फोट के बाद कोच्चि जा रहा था। बाद में इसमें विस्फोटक पाए जाने की जानकारी मिली। भारत की अध्यक्षता में 13वें ब्रिक्स शहरीकरण फोरम का आज नई दिल्ली में शुभारंभ हुआ। इस 2 दिवसीय फोरम में ब्राजील, रूस, इंडोनेशिया, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और शहरी विकास विशेषज्ञ शहरी विकास से संबंधित प्रमुख प्राथमिकताओं पर विस्तृत विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित हुए हैं। फोरम का उद्घाटन करते हुए आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ये मंच शहरी

0: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही हैं रीमा पाराशर।
1: नमस्कार। अब उपलब्धियों की बात होती है तो साल दर साल बात होती है। 12 साल एक लंबा समय होता है। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार ने 12 साल पूरे कर लिए हैं। एक के बाद एक कई रिकॉर्ड भी बन रहे हैं। एक रिकॉर्ड जिसकी चर्चा हो रही है वो ये कि जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड भी, अब अगर हम बात करें कि कितने समय के लिए और कितने दिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर रहे, तो वो रिकॉर्ड भी टूट रहा है। लेकिन सिर्फ बात इन रिकॉर्ड्स की नहीं है, बल्कि बात हो रही है क्या ये नया भारत कुछ विकास लेकर आया, विकसित भारत का नारा जो है वो साकार हुआ। और किसानों के लिए बहुत बात हो रही है, क्या किसान वाकई में खुश हैं, क्योंकि किसानों से सीधे जो जुड़ाव रखते हैं वो खास मंत्री इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिनको मामा भी कहते हैं लोग, अब आप पहचान ही गए होंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: धन्यवाद आपका।
1: अब मैं आपको मामा जी तो नहीं कहूं, लेकिन मैं आपको नेता के तौर पर पहले शुरुआत करती हूं। गर्मी बहुत है, किसान खुश हैं?
2: किसान खुश रहे इसके लिए सरकार दिन और रात काम कर रही है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार शपथ ग्रहण की थी, उनको बहुत बहुत बधाइयां, उनका अभिनंदन। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली, आत्मनिर्भर और विकसित भारत का निर्माण उनके नेतृत्व में हो रहा है। और मैं अभी 2 साल से उनके साथ मंत्री हूँ, मेरे जैसे कार्यकर्ता का सौभाग्य है कि उनके साथ काम करने का अवसर मिला, उनको बहुत बहुत बधाई।
1: अब क्योंकि आपने नरेंद्र मोदी जी से ही शुरुआत की है, मैं अपने हाथ में आपकी किताब भी लेकर आई थी, अपनापन। ये किताब आपने नरेंद्र मोदी संग आपके अनुभव, तो 2 साल से तो प्रधानमंत्री के तौर पर आप उनको देख रहे हैं, आप उनके कैबिनेट का हिस्सा है, सरकार में एक अहम पद पर हैं आप, लेकिन आपने जो इस किताब में अपनापन बताया है, आजकल अपनापन ये शब्द ही इस्तेमाल होना ऐसा लगता है खत्म हो गया है। कोई रणनीति की बात करता है, भारी भरकम शब्दों की बात होती है, ये अपनापन क्या जुड़ाव है मोदी जी के साथ?
2: भारतीय संस्कृति का मूल है एक ही चेतना हम सब में है, इसलिए दूसरा कोई है ही नहीं, आत्मवत सर्वभूतेषु। और यह भाव मैंने सदैव आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मन में और उनके काम में देखा। अपनापन अपने सहयोगियों के लिए, अपनापन अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपनापन देश की संपूर्ण जनता के लिए, अपनापन पीड़ित विश्व मानवता की सेवा के लिए। और इसलिए जब कोविड जैसी महामारी आती है तो वैक्सीन केवल भारत की जनता को नहीं लगती, 100 अलग अलग देशों के लोगों को भी लग जाती है। अगर प्राकृतिक आपदा किसी दुनिया के दूसरे देश में आती है तो सबसे पहले भारत प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपने हाथ आगे बढ़ाता है सहायता और सहयोग के लिए। लेकिन ये अपनापन केवल मनुष्य मात्र के लिए नहीं है, प्राणियों के लिए भी अपनापन। और इसलिए चाहे टाइगर हो चाहे चीता हो, वो सुरक्षित रहे, पुनर्वास हो, इसके प्रयत्न किए जाते हैं। अपनापन पेड़ पौधों के लिए, इसलिए एक पेड़ माँ के नाम जैसा अभियान चलता है, पर्यावरण और प्रकृति को बचाने की कोशिश होती है। अपनापन नदियों के लिए, और इसलिए गंगा जी से लेके बाकी सब नदियों को बचाने का अभियान चलता है। अपनापन पशु पक्षियों के लिए भी और पेड़ पौधों के लिए भी, नदियों पर्वत पहाड़ों के लिए भी और ग्रह नक्षत्र तारों के लिए भी, चारों तरफ अपनेपन का भाव दिखाई देता है। और वो अपनापन का अनुभव साथ काम करते हुए मैंने स्वयं भी किया है और सबके लिए अपनापन देखा, इसलिए किताब का नाम अपनापन। इससे आत्मीय और कोई शब्द नहीं मिला मुझे।
1: आपने कई जगह ये जिक्र किया है कि बहुत सारे ऐसे पल थे जिसमें कई बार आप भावुक हुए और आपने उनको याद किया नरेंद्र मोदी को, जैसे आपने बताया कि 23 के चुनाव के समय तमाम ऐसे मुद्दों पर उन्होंने सीधे आपको फोन किया और उन्होंने कहा मैं किसी नेता से नहीं, अपने शिवराज से बात कर रहा हूं। ये जो एक कनेक्ट है मोदी जी के साथ, यही वो कनेक्ट है जो जनता के साथ भी महसूस होता है आपको?
2: सबके साथ ही, मैं अकेला ऐसा नहीं हूं, ऐसे अनेकों साथी होंगे। जब ऐसा लगा कि उनको अपनेपन की जरूरत है तो उनसे किसी पद के कारण बात नहीं की, स्नेह प्रेम और आत्मीयता से बात की। और जब कांग्रेस के लोग कई तरह की बातें कर रहे थे कि अब तो मामा का श्राद्ध हो जाएगा और अलग अलग तरह की चीजें चल रही थी, तब उनने फोन करके कहा ना चुनाव की बात, ना मुख्यमंत्री से बात, अपने शिवराज से बात। तो यही तो अपनापन है।
1: शिवराज जी, अब क्योंकि हम 12 साल की बात कर रहे हैं, 12 साल में सबसे बड़ी उपलब्धि आप इस सरकार की क्या मानते हैं?
2: प्रधानमंत्री जी पूरी शिद्दत से अपना एक एक क्षण देश की और जनता की सेवा में लगा रहे हैं। और अंतर अगर देखना हो तो हम नहीं कहते, जमाना कहता है। एक जमाना वो था जब दुनिया के किसी देश में जाते थे तो कोई मान सम्मान और स्थान नहीं मिलता था। भारत को, हमारे प्यारे देश को, एक दिन आज का है जब जहां देखो पूरे सम्मान के साथ भारत का नाम लिया जाता है। हमारे देश के बिना किसी का काम नहीं चल सकता। मैं विश्लेषण करूं क्या हुआ है तो घंटों लग जाएंगे, उपलब्धियां कितनी हैं, लेकिन देश आज पूरे सम्मान और स्वाभिमान के साथ दुनिया में खड़ा है और कई मामलों में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है भारत।
1: ये तो वैश्विक स्तर की बात हो गई, लेकिन अगर अपने देश में सबसे बड़ी उपलब्धि देखें, जैसे आपको मामा, जो मैंने कहा इसलिए जाना जाता है कि बहनों, माताओं और सबके लिए आपने ऐसी स्कीम, लाडली बहना हो या तमाम स्कीम्स हो, कि पूरे देश ने बाद में उसको फॉलो किया, ऐसी क्या बड़ी उपलब्धि है केंद्र सरकार की जो एक आपको अगर गिनानी हो?
2: देखिए, एक तो संकट है
1: जिसको इतिहास याद रखेगा,
2: 25 करोड़, देखिए इतिहास को याद रखने वाली भी चीजें कही है, चाहे धारा 370 हो, अयोध्या में राम मंदिर हो, विकास से विरासत के एक नहीं अनेकों काम हो, नक्सलवाद से देश को मुक्त करना हो। कौन सोचता था कि ये दिन आएगा कि बस्तर की गलियों में आज शिक्षा से लेके रोजगार से लेके शांति की बयार बहेगी? कौन कल्पना करता था? अगर वो गुनाऊंगा तो संख्या बहुत बड़ी है, लेकिन आम जनता की दृष्टि से अगर देखें, बहनों की बात करें तो 16 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचा है, 12 करोड़ शौचालय बने हैं, इज्जत घर जिनका नाम दिया था जनता ने, 10 करोड़ हमारी ऐसी बहनें जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में सम्मिलित है, जिनमें से 3 करोड़ हमारी दीदियां लखपति दीदी बन गई है, गरीबों के 4 करोड़ से ज्यादा घर बन चुके हैं। आप किसानों को अगर देखें तो 4 लाख करोड़ से ज्यादा राशि किसानों के खाते में सीधे डालने का काम हुआ है। मैं अगर गिनाऊंगा तो इतने काम हैं कि समय कम पड़ता है। तो गरीबों का कल्याण हो, किसानों का कल्याण हो, हमारे नौजवानों के कल्याण के काम सोचने का मामला हो, गरीब, किसान, महिला, नौजवान, सबकी प्रगति और विकास के लिए अनेकों कदम उठे हैं और आप देखेंगे कि जीवन स्तर में लगातार सुधार हो रहा है।
1: शिवराज जी, आप इतने अनुभवी नेता हैं, ऐसा कुछ लग रहा है कि एक साल के अंदर सरकार गिरने वाली है? LOP तो ऐसा ही मानते हैं राहुल गांधी, उनका कहना है एक साल भी नहीं चलेगी।
2: बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है।
1: नहीं, वो कह रहे हैं कि सरकार के अंदर बैठे हुए लोग उनको ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं।
2: ये कौन से ज्ञान चक्षु है उनके पास, दिव्य दृष्टि है, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन अभी तो 2029 आने वाला है, 2029 जीतेंगे हम मोदी जी के नेतृत्व में, और 2029 के बाद 2034 देखें जीतेंगे, और 2034 के बाद 2039 भी जीतेंगे। वो ख्याली पुकाओ पकाना बंद करें, मुंगेरी लाल के सपने ना देखें।
1: बच्चों से आपका जुड़ाव काफी ज्यादा है, मामा सब कहते हैं। नीट एग्जाम को लेकर के एक अलग तरीके का विवाद पैदा हुआ है, बात हो रही है कि भाई क्या सरकार सही कर रही है?
2: हम बच्चों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, कोई अन्याय नहीं होने देंगे। जैसे ही अनियमितता का पता चला, धर्मेंद्र जी ने तत्काल कदम उठाया, परीक्षा निरस्त की गई, दूसरी परीक्षा की तिथि 12 मई के बाद 15 मई को तत्काल घोषित कर दी गई, फीस लौटाई गई, अगली परीक्षा के लिए कोई फीस नहीं लगेगी, और संपूर्ण व्यवस्थाएं ऐसी बनाने की कोशिश की है, प्रयत्न किया है कि जिससे कहीं कोई गड़बड़ और दिक्कत ना हो। CBI को मामला दिया गया, अपराधी कई पकड़े गए हैं, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी। जो सारे कदम उठाए जाने थे वो हर कदम उठाए गए हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी भी लगातार सजग और सचेत हैं, पहले भी पेपर लीक होते थे, इतनी तत्परता से कब कार्रवाई होती थी, लेकिन बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए सरकार दृढ़ संकल्पित है और एक के बाद एक जरूरी कदम उठाए गए।
1: आपने जो बात कही पहले भी पेपर लीक होते थे, तो ये नैरेटिव की लड़ाई में क्या पीछे रह गए हैं कि ये बात सही से सामने नहीं आ पा रही है कि पहले और अब में ऐसा कोई बड़ा अंतर नहीं?
2: ये है कि पहले कुछ नहीं होता था, अब कठोर कार्रवाई हुई है और जहां भी गैप मिला उसको ठीक करने की, भरने की कोशिश की गई।
1: मतलब बच्चों के साथ कुछ गलत नहीं होगा?
2: सवाल ही पैदा नहीं होता। बच्चे देश का भविष्य हैं, बच्चे हमारी सबसे बड़ी दौलत है, किसी भी कीमत पर उनके साथ ना तो अन्याय ना खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा, यही सरकार का संकल्प।
1: क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो भारत है इसमें गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है? क्योंकि एक बड़ा आरोप ये भी लगाया जा रहा है, एक नैरेटिव पूरा सेट करने की कोशिश हो रही है।
2: कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर उठ गए और वो कह रहे हैं गरीब गरीब होते जा रहे हैं।
1: नहीं तो हकीकत क्या है, इसका जवाब आप कैसे देंगे ऑपोजिशन?
2: हकीकत तो यही, जनता जान देखिए, हकीकत है पश्चिम बंगाल, हकीकत है बिहार, हकीकत है दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, कहीं भी आप देख लीजिए, हर जगह अपवाद इक्का दुक्का छोड़ के भारतीय जनता पार्टी शानदार सफलता प्राप्त कर रही है, NDA शानदार सफलता प्राप्त कर रहा है। इसका अर्थ सीधा ये है कि जनता सरकार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है।
1: इसमें वोट चोरी का कोई रोल नहीं है?
2: नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। वोट चोरी होती तो तमिलनाडु भी जीत जाते।
1: नहीं, लेकिन अब देखिए, अब ज्ञानेश कुमार जी को लेकर के भी तो सवाल खड़े हो रहे हैं ना कि वोट चोरी है, और फिर जहां जहां बीजेपी जीत रही है वहां वहां पर विकसित भारत की बात नहीं हो रही, वहां वहां पर नैरेटिव वही आ जाता है, डेमोग्राफिक चेंज हो रही है या फिर हिंदू मुसलमान। अब अखिलेश यादव कह रहे हैं अभी से यही बात हो रही है।
2: केवल भारत का विकास है और जनता का कल्याण, ये दोनों काम दिन और रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहे हैं, इसलिए जनता साथ खड़ी है। उपलब्धियां तो मैं कई घंटों आपको गिना सकता हूं।
1: सर, लेकिन नेहरू जी का जो रिकॉर्ड तोड़ा है, नेहरू जी वो प्रधानमंत्री थे जो कि जब भारत आजाद हुआ स्वतंत्र भारत के बाद की नींव रखी, नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत की बात कर रहे हैं, दोनों के इस अंतर को आप कैसे देखते हैं?
2: देखिए, कौन कितने समय प्रधानमंत्री रहा, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि कौन ने कैसा काम किया। एक जमाना था जब भारत को अपनी जनता का पेट भरने के लिए ही दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। PL 480 जैसा गेहूं, लाल गेहूं, जिसको मतलब जो इंसानों के खाने के लायक ही नहीं था, वो हम इंपोर्ट करते थे। उस जमाने में विकास की दृष्टि नहीं थी। कई ऐसे फैसले हुए जिनने देश और देश की जनता को बहुत नुकसान पहुंचाया। सिंधु जल समझौता ही अगर हम देखें, आज वो पानी हमारे काम आ रहा है जो बह के पाकिस्तान जाता था। मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा, लेकिन प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 24 घंटे मतलब मैं तो कहूंगा कि 24 घंटे में से भी हर क्षण, हर मिनट और हर सेकंड राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का महायज्ञ चल रहा है। निरंतर काम राष्ट्रहित सर्वोपरि, जनहित सर्वोपरि, इसी भाव से निरंतर काम चल रहा है। और चाहे वो देश के विकास का काम हो, इंफ्रा का सवाल हो, गरीबों के कल्याण का सवाल हो, किसानों के उत्थान का सवाल हो, नौजवानों के बेहतर भविष्य के निर्माण का सवाल हो, या महिला सशक्तिकरण का मामला हो, आप चारों तरफ देखेंगे कि एक के बाद एक अनेकों निर्णय हो रहे हैं, लागू किए जा रहे हैं और वो जनता की जिंदगी बदल रहे हैं।
1: शिवराज जी, आप तो लगातार ट्रैवल कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ हर दूसरे दिन आप देश के किसी ना किसी राज्य में होते हैं, अलग अलग जगहों पर। लोग आपसे ये बात करते हैं कि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं या LPG के दाम की बात पूछते हैं क्या लोग?
2: आप तुलनात्मक दृष्टि से देखिए, मिडिल ईस्ट के संकट के बाद दूसरे देशों में कितने दाम बढ़े हैं और हमारे यहाँ कितने दाम बढ़े हैं। जनता बहुत समझदार है, हर परिस्थिति जनता के सामने है। मिडिल ईस्ट के संकट को भी जनता अच्छी तरह से पहचानती और समझती है, और प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिए हैं, जो कदम उठाए हैं, उससे देश के सामने जो बड़े खतरे और संकट हो सकते थे उनसे निपटने में मदद मिली है, और जनता ये सच जानती है। देखिए, प्रधानमंत्री जी का संकट को पहचानना और पहचान के रास्ते निकालना, अभी जो उन्होंने अपील की पिछले दिनों, और अपील की उन कई लोगों ने अमल करना शुरू कर दिया। कोविड से जिस ढंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी निपटे, अगर कई बार मैं सोचता हूँ तो मतलब मन कांप जाता है कि मोदी ना होते तो क्या होता। दो दो वैक्सीन 9 महीने के अंतराल में बनकर लग भी गई, केवल हमारे देशवासियों को नहीं लगी, दुनिया के कई देशों के लोगों को भी लगी। और जिस ढंग से जनता कर्फ्यू, थाली ताली, दीपक जलाओ, आप एक के बाद एक कदम के बारे में सोचिए। जब ऑक्सीजन नहीं थी तो ऑक्सीजन की स्पेशल ट्रेनें चली और खाली जो टैंकर थे वो वायुसेना के हवाई जहाजों से वापस भेजे गए। जिस ढंग के कदम उठे, कोई कल्पना करता है क्या? अब कोई तो कोविड में भी आनंद देखे कि जनता परेशान है और वो आनंद ले। अगर विपक्ष की मानसिकता हो तो मैं उनकी बुद्धि को मैं क्या कहूं। इसलिए हर संकट में अवसर ढूंढना राजनीति के ये गलत है। हर संकट का मुकाबला भारत ने बहुत मजबूती से किया है। परिस्थितियां बनती है तब कुछ निर्णय होते हैं।

0: लेकिन देश लगातार आगे बढ़ता है।
1: मैंने पता किया, मुझे पता लगा कि जिस दिन प्रधानमंत्री ने ये अपील की थी, आपने उसी दिन तुरंत अपने ऑफिस में कर्मचारियों को सबको बुलाकर उनको बताया था कि अब क्या करना है, कैसे प्रधानमंत्री की अपील का एक तरीके से पालन करना है। आपने भी कुछ टिप्स अपने ऑफिस में दे दिए थे लोगों को।
0: तत्काल देखिए, मैं तो उनकी हर भाषण को ध्यान से सुनता हूँ। पहली बार जब मैं मंत्री बना उनके नेतृत्व में, और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन उन्होंने अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि तीसरे टर्म में 3 गुना ज्यादा ताकत से काम करूंगा। मैंने तुरंत वहां से उतरते ही लाल किले की प्राचीर से अपने दोनों सचिवों को फोन किया, रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर, और कहा कि कल सारे कर्मचारी अधिकारी इकट्ठे होंगे, बाकी सब वर्चुअल जुड़ेंगे, और हम सब ने खड़े होकर संकल्प लिया राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए कि हम भी 3 गुना ताकत से काम करेंगे। प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो हम पीछे कैसे रहें। उन्होंने इस बार कहा कि सरकार फाइल में नहीं, जनता की लाइफ में दिखनी चाहिए। हमने तुरंत नियम और प्रक्रियाओं के सरलीकरण का एक व्यापक अभियान छेड़ा कि जनता को कोई तकलीफ ना हो किसी भी कीमत पर। जो अभी उनकी अपील आई उस पर तुरंत हमने अमल करते हुए कैसे हम कार पूलिंग कर सकते हैं,
1: अच्छा,
0: कैसे विदेश यात्रा अनावश्यक बिल्कुल नहीं करनी है, डीजल पेट्रोल कैसे बच सकता, उसके एक एक कदम हमने उठाए जिनमें मैं भी शामिल हूँ, और मिलकर उन पर अमल करने की कोशिश की।
1: तो आप भी कार पूल करते हैं अगर बाहर जाते हैं तो?
0: हम बैठक में जाते हैं कैबिनेट की, और दूसरे मंत्री जा रहे हैं तो हम साथ बैठ के जाते हैं, तो काय को हम दूसरी कार ले जाएं, जब पिछली बार बैठक में हम 3 मंत्री एक साथ गए थे कार।
1: अच्छा, देखिए ये सब खबरें बाहर नहीं आती है, ये पता ही नहीं चलता किसी को,
0: और इसलिए कोशिश करते हैं कि यथासंभव जनता के काम को नुकसान ना पहुंचाते हुए हम जो भी बचत कर सकते हैं वो करने की कोशिश करें।
1: शिवराज जी, AI नैनो की भी बहुत बात हो रही है, उसको लेकर थोड़ा सा विजन बताइए कि क्या विजन है, और इससे किसानों को किस तरीके से, मतलब अगर कुछ दिक्कत है तो सामना कैसे करें, और फायदे क्या पहुंच सकते हैं?
0: देखिए, हमको एग्रीकल्चर के माध्यम से अगर आप बात करते हैं तो 3 बड़े लक्ष्य हमारे, एक, देश की खाद्य सुरक्षा हमें सुनिश्चित करना है, दूसरा, पौष्टिक आहार जनता को उपलब्ध कराना है, और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण इन दोनों से भी किसान की आजीविका और रोजगार सुनिश्चित करना है, और उसके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अब बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, और इसलिए AI का उपयोग भी हम कैसे हम कर सकते हैं, मैकेनाइजेशन का काम कैसे करके उत्पादन बढ़ा सकते हैं, उत्पादन की लागत घटा सकते हैं, इस पर हम निरंतर काम कर रहे हैं। एक ने अनेकों प्रयोग हो रहे हैं, जैसे AI के माध्यम से ही अगर आप बात करेंगे,
1: जो अल नैनो की हम बात कर रहे हैं,
0: हमने अल नैनो के भी हम बात करें, लेकिन मैं एक उदाहरण आपको देता हूं। हमने एक भारत विस्तार, हमने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जिस पर कोई भी किसान पूछता है अगर कोई सवाल कि मेरी फसल की पत्ती पीली हो रही है, ऐसे लक्षण है, अब मैं क्या करूं, तो तत्काल उसको जवाब मिलता है कि फलानी बीमारी हो सकती है, आप ये दवाई डालिए। ये AI का इस्तेमाल है। मोबाइल लेके आप खेत में खड़े हो जाएं तो ये पता चल जाता है कि मिट्टी में कौन कौन से तत्व है और हमको कितनी खाद डालनी चाहिए, और नहीं तो बिना मतलब के जिस चीज की जरूरत नहीं है वो भी डाले जा रहे हैं, खर्चा भी बढ़ता है, उत्पादन में भी कोई लाभ नहीं होता। तो AI के ऐसे अनेकों उपयोग हैं जो निरंतर कर रहे हैं। अभी अल नीनो का संकट दुनिया पे बरकरार है, केवल भारत नहीं, दुनिया के मौसम विज्ञानी ये कह रहे हैं कि अल नीनो के कारण यहाँ बारिश कम हो सकती है। हमने वो 197 डिस्ट्रिक्ट्स की पहचान की है जहाँ कम बारिश होने की संभावना है, और हमने AI के माध्यम से उन जिलों को न केवल पहचाना है बल्कि उनका कंटेंजेंसी प्लान बना रहे हैं कि वहाँ अगर ऐसी परिस्थिति बनी है, संभावित है, क्योंकि मौसम के बारे में 100% कोई नहीं कह सकता, संभावित है, तो उनका कंटेंजेंसी प्लान हमने बनाया है उन जिलों में कौन सी फसल बोनी चाहिए, कौन से बीज इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सी किस्म बेहतर रहेगी। अगर बारिश में तो स्पेल में लंबा गैप हो गया, एक दिन बारिश हुई और फिर 15 दिन बाद 20 दिन बाद बारिश होती है, तब हमको क्या करना चाहिए, तो सारी चीजों का आकलन करके और उसकी AI की मदद से हम उससे कैसे निपटेंगे, इसका प्लान भी हम तैयार कर रहे हैं। मध्य भारत के कई इलाकों में कम बारिश की संभावना है तो उनमें हम क्या करेंगे, उसका प्लान हमने तैयार किया है। हम उसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, उसमें भी टेक्नोलॉजी का सहारा हम ले रहे हैं। हर सप्ताह मैं मॉनिटरिंग करता हूँ, रोज हमारे अफसर मॉनिटरिंग करते हैं कि आज मानसून कहाँ पहुंचा, कितना पहुंचेगा, किस गति से बढ़ेगा, कहाँ कम संभावना है, कहाँ ज्यादा संभावना है, तो सब चीजों का आकलन करके हम फैसले कर रहे हैं।
1: आपको लगता है शिवराज जी कि बंगाल के इलेक्शन ने ये तुष्टीकरण और ये वोट बैंक की राजनीति को काफी हद तक खत्म किया है?
0: देखिए, सीधा तुष्टीकरण अब ये देश स्वीकार नहीं करेगा, वोट बैंक की राजनीति ये देश स्वीकार नहीं करेगा। आज गर्व के साथ हम कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी एक सुपर ह्यूमन है, भारत के लिए भगवान का वरदान है, उनके नेतृत्व में जो हम कर रहे हैं, देश की सीमाओं की सुरक्षा हो, घुसपैठ जैसे

0: मामले हों, प्रगति और विकास और जनता का कल्याण तो है ही, बल्कि वसुधैव कुटुंबकम के मूल मंत्र को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रहित सर्वोपरि मानते हुए जो विश्व हित की भी सोचता हो, तो ये भारतीय जनता पार्टी का रास्ता है, ये नरेंद्र मोदी जी का विजन है।
1: शिवराज जी, बहुत बेबाक तरीके से आपने बात की। एक ऐसी बात नरेंद्र मोदी के बारे में, क्योंकि हम 12 सालों पर बात कर रहे हैं और रिकॉर्ड तोड़ने की बात कर रहे हैं, जो आप हमेशा उनसे सीखते हैं और उनकी बात को याद रखते हैं, क्या वो एक स्ट्रिक्ट प्रधानमंत्री हैं, नेता हैं, या सॉफ्ट हार्टेड हैं, क्या हैं?
0: केवल एक ही घटना में सुनाऊंगा। एक बार मैंने उनके सामने, मैं और वो दोनों थे, उनके कामों की प्रशंसा की कि ये बहुत अच्छा हुआ, देश इसको बहुत पसंद करता और हमारे मन में भी आपके प्रति श्रद्धा का इसलिए भाव है। तो उन्होंने एक ही शब्द कहा, मैं प्रशंसा से नहीं, मैं काम से प्रसन्न होता हूँ। जो काम करेगा उसको कंधों पर बैठा के मैं नाच सकता हूँ, लेकिन प्रशंसा मैं नहीं सुनता, केवल काम पसंद करता हूँ। और वो चीज़ मुझे हमेशा ध्यान में रहती है, काम करो, काम करो, काम करो, चलते रहो, चरे वेती, चरे वेती, चरे वेती, अपने देश के लिए काम करते रहो, अपनी जनता के लिए काम करते रहो, इसी में मानव जीवन की सार्थकता है।
1: बहुत आपने एक, हम सबको भी एक सीख दी चरैवेति चरैवेति के इस मंत्र के साथ, और यही मंत्र होना भी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शिवराज सिंह चौहान जी हमारे साथ इस खास बातचीत।
0: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जी।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के, इस विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही थी रीमा पाराशर। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत। अब सुनिए संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल के साथ डॉक्टर सुयश शर्मा की विशेष बातचीत।
3: छब्बीस मई 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की बागडोर संभाली। उस समय उन्होंने सिर्फ एक सरकार नहीं बल्कि एक नए भारत के संकल्प को नई ऊर्जा दी, और तब से लेकर के पिछले 12 सालों में चाहे विकास की बात करें या सुशासन की बात करें, महिलाओं के सम्मान की बात करें या फिर गुलामी की मानसिकता से मुक्त भारत की बात करें, लगातार मोदी सरकार पूरे देश में काम कर रही है। और गुलामी की मानसिकता की जब हम बात करते हैं तो जो हमारे भारत की संस्कृति है, सभ्यता है, कैसे आगे बढ़ रही है पूरी आधुनिकता के साथ में, ये भी हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व में भारत की संस्कृति अपना परचम लहरा रही है और केंद्र सरकार का बराबर साथ दे रही है। केंद्र सरकार का मंत्रालय संस्कृति मंत्रालय, तो खास मेहमान है संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में।
4: धन्यवाद।
3: भारत किस तरीके से, जो उसकी संस्कृति थी, सभ्यता थी, वो उसका पुनः जागरण हो रहा है। तो अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवाहन, गुलामी की मानसिकता से मुक्त भारत, तो उसको संस्कृति मंत्रालय कैसे आगे लेके जा रहा है?
4: माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो दिशा निर्देश दिया वो यह है कि भारत की जो सभ्यता है वो युगे युगीन है, वो युगों युगों से चली आई है और वो अटूट है। बीच में ऐसे कालखंड आए जिन कालखंडों में इस अटूट सभ्यता को तोड़ने की कोशिश की गई, या जो इस सभ्यता के स्मारक थे उनको तोड़ने की कोशिश की गई, पर इन सब प्रयासों के बाद भी जो हमारी युगे युगीन भारत की सभ्यता है वो अनावृत चलती रही। इस अध्याय को पुनः स्थापित करने के लिए और जो गुलामी का कालखंड रहा उसकी याद को समाप्त करने के लिए, या उसकी याद को एक ऐसे पृष्ठभूमि में रखने के लिए जिससे कि हम अपनी प्राचीन सभ्यता, हमारी परंपराएं, हमारी ज्ञान परंपराएं, उनको हम पुनः स्थापित कर पाएं और हमारे जो नागरिक हैं, खासकर जो हमारे युवा वर्ग हैं, उनके समक्ष ला पाएं, उसके लिए बहुत सारे कदम भारत सरकार ने उठाए। बहुत सारे जो हमने काम किए माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में, उसमें कुछ उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नॉर्थ और साउथ ब्लॉक, जो कॉलोनियल समय में भारत की सेक्रेटेरिएट थी और जहाँ से भारत के राज्य का संचालन अंग्रेज करते थे, उस नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को अब एक नया म्यूजियम बनाने की घोषणा की, जिसपे हम काम कर रहे हैं, और वो भी म्यूजियम युगे युगीन भारत के नाम से। भारत की जो ज्ञान परंपरा है, अगर आप लॉर्ड मैकले ने जब भारत की एजुकेशन पॉलिसी बनाई

0: कॉलोनियल के समय में, उन्होंने कहा कि यूरोप की किसी भी लाइब्रेरी में जो एक शेल्फ की किताबें हैं वो भारत की पूरी ज्ञान परंपरा से ज़्यादा बेहतर हैं। उसको जो वो भावना भारत में लाने की कोशिश की गई कॉलोनियल राज द्वारा, उसको मिटाने के लिए और भारत की जो अपनी ज्ञान परंपरा है उसको पूरे विश्व के सामने लाने के लिए और भारत के नागरिकों के सामने लाने के लिए ज्ञान भारतम का काम प्रारंभ हुआ है, जिसमें जो हमारी हस्तलिखित मैनुस्क्रिप्ट्स हैं, जो हमारी पांडुलिपियाँ हैं, जो विभिन्न विषयों पे हैं, खासकर जो साइंटिफिक सब्जेक्ट्स पे हैं, वो चाहे मैथमेटिक्स हो, एस्ट्रोनॉमी हो, हीलिंग सिस्टम्स हो, मेडिसिन हो, जो चिकित्सा के साथ साथ जो सर्जरी की डेवलपमेंट थी उसके ऊपर जो हमारा काम था, उस सब को अब हम पूरे विश्व के सामने ला रहे हैं, एक नेशनल रिपोजिटरी बना रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे ऐसे ऐतिहासिक स्थल थे, हमने उनको पुनः निर्मित करते रहे, बार बार तोड़ते रहे और हम निर्मित करते रहे, इसको भी भारत की याद में दोबारा भारत के नागरिकों के समक्ष लाने के लिए सोमनाथ स्वाभिमान पर्व हम मना रहे हैं।
1: सर, आपने युवा पीढ़ी की बात कही, जहां किसी भी देश का हम कहते भी हैं कि अगर कोई भी देश आगे बढ़ रहा है तो उसका जो आधार होते हैं उस देश के युवा होते हैं। और जैसा कि हमने किताबों में भी पढ़ा है कि चाणक्य ने कहा था कि अगर किसी देश को खत्म करना है तो उसकी संस्कृति खत्म कर दीजिए, वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। आपने अभी जिक्र करा शिक्षा में भी बदलाव हो रहा है, और अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी की, नालंदा यूनिवर्सिटी जो हमारे यहाँ इतनी पुरानी यूनिवर्सिटी मानी जाती है कि जब पूरा विश्व समझने की कोशिश कर रहा था कि सभ्यता होती क्या है, उस वक्त हम सभ्यता के धरातल पर दौड़ रहे थे, और उसको भी संस्कृति मंत्रालय अब आगे लेके जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे?
0: भारत की ज्ञान परंपरा का एक बड़ा सेंटर नालंदा विश्वविद्यालय था, जो प्राचीनतम, जो विश्व में अकेला ऐसा बड़ा विश्वविद्यालय था जिसके साथ पश्चिम भारत में तक्षशिला था। नालंदा की जो परंपरा थी उसको इसी कालखंड में, जब भारत पे हमारे पे अतिक्रमण हुए, हमारे पे बहुत सारे आक्रमण हुए, उस समय नालंदा पे भी आक्रमण हुआ, उसकी बहुत बड़ी लाइब्रेरी, उसका पूरी व्यवस्था को ध्वस्त करने का प्रयास हुआ, परंतु माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अब नालंदा की जो ज्ञान परंपरा है उसका पूरा रिवाइवल हुआ है। वहाँ पे नालंदा बिहार विश्वविद्यालय चल रहा है, जिसमें जो बुद्धिस्ट और पाली लैंग्वेज और पोटी लैंग्वेज का जो लर्निंग है वो होता है, इतिहास, संस्कृत, और साथ में जो सांस्कृतिक धरोहर नालंदा की थी, जो ज्ञान परंपराएं थी, उसके ऊपर वहाँ पे शिक्षण का कार्य होता है, उस पर रिसर्च का कार्य होता है। उसी तरह जो नई नालंदा यूनिवर्सिटी बनी है, जिसमें मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ ट्रेडिशनल एजुकेशन को साथ जोड़ के एक बहुत बड़ा कार्य इस सरकार द्वारा इस समय में किया गया है।
1: आपने अभी जिक्र किया राष्ट्रीय स्मारकों का जो पुनर्निर्माण हो रहा है, तो क्या आपको लगता है कि ये जो राष्ट्रीय स्मारकों का जो पुनर्निर्माण हो रहा है, या जो हमारे राष्ट्रीय जो स्वतंत्रता सेनानी थे जिनके बारे में बच्चों को नहीं पता था, मतलब आज की जेन जी की अगर मैं बात करूं तो वो ज्यादा जानते हैं, रादर हम अपनी बात करें अपने समय में हमें नहीं पता था, तो उसके लिए क्या आपको लगता है कि ये इस तरीके से अगर ये दोबारा निर्माण किया जा रहा है, या फिर जो स्थानों के नाम राष्ट्रीय सेनानियों के नाम पर रखे जा रहे हैं, क्या उससे कोई बदलाव आएगा और एक जो सभ्यता है वो पुनः जागृत होगी?
0: बिल्कुल, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। जब कॉलोनियल शासन था तो अंग्रेजों के जो उस समय के प्रशासक थे या उस समय के गवर्नर जनरल थे या वाइसरॉय थे, उनके नाम पे बहुत सारे भारतीय स्थानों के नाम रखे गए, जैसे पोर्ट ब्लेयर था जो अब श्री विजयपुरम है, जो वहाँ पे द्वीप थे वो अब नेताजी द्वीप के नेताजी के नाम से द्वीप हुआ, जो बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जिनमें कॉलोनियल लिगेसी थी, उनको परिवर्तन करके हमने अपनी जो ऐतिहासिक धरोहर है उसको पुनर्जागृत किया है। इसी प्रकार जो ऐतिहासिक स्थल हैं या जो पुरातत्व स्थल हैं, उनको हम अगर विकसित करते हैं और उनके ऊपर हम विजिटर एमिनिटीज अच्छे से डेवलप करते हैं, और खासकर वहाँ के जो इंटरप्रिटेशन सेंटर हैं, और वहाँ पे अगर हम ऑडियो विजुअल गाइड के साथ ARVR एक्सपीरियंस क्रिएट करके हम पूरा नैरेटिव जो वहाँ पे जो हमारे यूथ हैं, हमारे नए पीढ़ी के लोग हैं वो जाते हैं, तब उनको वो समझ में आएगा कि वास्तव में इतिहास में इन स्थानों का क्या महत्व था और क्या हमारी सिविलाइजेशन की, हमारी सभ्यता की ऊंचाई थी प्राचीन समय में। जैसे लोथल में एक बहुत बड़ा मैरीटाइम म्यूजियम स्थापित हो रहा है

0: ये लोथल 5,000 वर्ष पुरानी साइट है। 5,000 वर्ष पहले यूरोप अमेरिका में तो कुछ भी नहीं था, परंतु भारत में एक बहुत बड़ी सभ्यता थी और उस सभ्यता का संपर्क था विश्व की अन्य सभ्यताओं के साथ, और डॉकयार्ड था, पूरा मैरिटाइम सिस्टम था, वेयरहाउसेस थे, ट्रेड का सिस्टम था, सील्स थी, करेंसी थी। तो एक पूरी विकसित सभ्यता थी जिसको उजागर अगर हम अच्छे से प्रॉपरली इन साइट्स को डेवलप करके करते हैं तो हमारी युवा पीढ़ी को उसकी उसका महत्व और उसकी ज्ञान की जो जो जो ज्ञान का ज्ञान की प्राप्ति होगी उसे ना केवल नेशनल प्राइड डेवलप होगा बल्कि जो एक पूरा माइंडसेट है वो भारत के नागरिकों का बदलेगा।
1: एक सवाल मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी, खासकर हमारी जेंजीज के लिए, क्योंकि आपने दोनों दौर देखे हैं सर। आपने वो दौर भी देखा जब ये गुलामी की जो मानसिकता थी वो पूरी तरीके से छाई हुई थी, और अपनी ही सभ्यता, अपनी ही संस्कृति, अपने ही इतिहास से हम वंचित थे। और आज जब आप इस दौर में ही संस्कृति मंत्रालय के सचिव बनकर जब आप विदेशों में जाते हैं, कई कार्यक्रम करते हैं, तो और खासकर जब भारत की वो पुरानी धरोहर हैं, वो मूर्तियां, वो अमूल्य चीजें आप जब भारत वापस लेकर के आते हैं, तो कैसा महसूस होता है? क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को?
0: देखिए, मिक्स्ड भावना होती है। जब विदेश में जाते हैं तो कई बार हमें दिखता है कि भारत की धरोहरें उन्होंने अपने म्यूजियम्स में रखी हुई हैं और वो प्राउडली उनको डिस्प्ले करते हैं, तो मन में ये भी आता है कि ये धरोहर भारत की है और भारत के पास वापस आनी चाहिए। पर जब हमें कुछ हिस्सा धरोहर का हमें वापस मिलता है और हम वापस भारत में लेके आते हैं तो एक बहुत गर्व की भावना भी होती है, क्योंकि ये तभी संभव हो पाया जब सरकार ने बहुत निश्चय करके इस मूवमेंट को स्टार्ट किया है। बट ये शुरुआत है। मेरा मानना है कि जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इसको लीड कर रहे हैं और जिस तरह से पूरी होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है, जिसमें ना केवल भारत का कल्चर मंत्रालय या संस्कृति मंत्रालय काम करता है बल्कि भारत के सभी मिशंस, सारे एम्बेसीज, सारे हाई कमीशंस, हमारे हाई कमिश्नर्स और एम्बेसडर्स पूरे विश्व भर में इस कैंपेन का हिस्सा बन के इस काम को कर रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि जो हम करते जा रहे हैं और जितनी हमें सफलता प्राप्त हो रही है उससे पूरे भारतवासियों को उस पर गर्व होगा। पर मैं ये भी मानता हूँ कि और भी काम होना है, उस काम के लिए हमें और शक्ति हमारा देश देगा, हमारे नागरिक देंगे। और मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो भारत की रिस्पेक्ट और भारत की वॉइस जो आज सुनी जा रही है विश्व में, वो पहले कभी नहीं थी। जैसे आपने कहा कि मैंने पूर्व का दौर भी देखा है, मैं इंटरनेशनल डेलीगेशन में पूर्व में भी जाता रहा हूँ और अब भी मैं इंटरनेशनल डेलीगेशन में जाता हूँ, पर आज जो हमारी वॉइस है और जो जिस तरह से भारत को बहुत गंभीरता से सुना जाता है और जहाँ भारत कोई स्टैंड लेता है तो हमेशा हमारे को साथी मिलते हैं, क्योंकि हमारी बात नॉर्मली हम वैसी बात करते हैं जो विश्व के कल्याण की हो, जो विश्व को साथ लेके चलने की हो, और जब हम वो बात करते हैं तो हमारे को साथ भी मिलता है और हमें सफलता भी मिलती है।
1: सर, एक आखिरी सवाल, क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों और खासकर हमारे जेंजी दर्शकों से, जबकि भारत में महिलाओं का वही सम्मान जो उन्हें दिया जाता था महिलाओं की लिए सामने आ रहा है, वही संस्कृति आज हमारी दीपावली का त्योहार पूरा विश्व मनाने जा रहा है, तमाम बदलाव आपने लेकर के आए केंद्र सरकार के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, क्या कहना चाहेंगे?
0: देखिए, बहुत सारे प्रयास हुए थे जिनको उस समय सफलता नहीं मिली। जैसे 20वीं सदी की शुरुआत में एक सोसाइटी बनी थी, इट वॉज उसको कहा गया था ग्रेटर इंडिया सोसाइटी। उसका मतलब ये था, जो करीब 1926 में कोलकाता में बनी थी, उसका जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जो भारत से विश्व को गया उसको हम विश्व को बताएं। तो शुरुआत हुई, अब हम उसको बहुत अच्छे से विश्व को बता पा रहे हैं। ये इसलिए संभव हो पाया कि हमने गर्व से अपना सीना ताना सिर ऊंचा किया और अपनी बात पूरे विश्व में कहना शुरू किया माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और आज जब हम कह रहे हैं, पूरा विश्व उसको सुन भी रहा है और उसको मान भी रहा है, और इसको हम सिस्टमैटिकली डॉक्यूमेंट भी कर रहे हैं और इसको रिकग्निशन के लिए, ताकि ये ऐसा नहीं हो कि हम कहें और शुरू में माना जाए उसका इंटरनेशनल रिकग्निशन नहीं हो, उसकी हम इंस्क्रिप्शन भी यूनेस्को में कराने के लिए लेके जा रहे हैं। तो पूरा जो जो प्रक्रिया है, पूरा सेटअप है, वो ऐसा है कि ना केवल हम किसी चीज़ को इस्टेब्लिश करें बल्कि उसको इस्टेब्लिश करके हम इस तरह से प्रस्तुत करें कि पूरा विश्व उसको रिकग्नाइज करे और रिकग्नाइज करके उसको डॉक्यूमेंट करे और फाइनली वो रिप्रेजेंटेटिव

0: में विश्व में मान्यता प्राप्त करें, उस ओर हम बहुत अच्छे से और बहुत सिस्टमैटिकली हम काम कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें हमें सफलता मिलेगी।
1: तो हम बात कर रहे थे संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल जी से, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल के साथ डॉक्टर सुयश शर्मा की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: Governing Council की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
1: To youth, to working life, to old age.
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
3: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। से ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
0: भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सेटेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया। नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। पंचायती राज मंत्रालय ने कहा कि पंचायती राज से संबंधित 4 पहल राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 के लिए चुने गए हैं। डिजिटल शासन और नागरिक केंद्रित सेवा वितरण व्यापक बनाने में ये ग्राम पंचायतों की बढ़ती भूमिका दर्शाता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में डेटा एनालिटिक्स के उपयोग द्वारा डिजिटल बदलाव श्रेणी में पंचायत उन्नति सूचकांक को स्वर्ण पदक दिया गया है। ये सूचकांक स्थानीय सतत विकास लक्ष्यों से जुड़े संकेतकों के आधार पर देश भर की ग्राम पंचायतों के प्रदर्शन का आकलन करता है। मंत्रालय ने कहा कि महाराष्ट्र के सांगली जिले की कड़ेपुर ग्राम पंचायत को स्वर्ण पदक मिला है, जबकि त्रिपुरा के पश्चिमी त्रिपुरा जिले की बिजॉय नगर ग्राम पंचायत को ग्राम पंचायतों द्वारा जमीनी स्तर की पहल श्रेणी के अंतर्गत सेवा वितरण के लिए रजत पदक प्राप्त हुआ है। अगले महीने की 1 और 2 तारीख को राजस्थान के जयपुर में आयोजित होने वाले 29वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन के दौरान ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि भारत ने वर्ष 2025-26 में अनाज उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान चावल और गेहूं का उत्पादन अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। उद्घाटन मैच अब से कुछ ही देर में रात 12:30 बजे से मेजबान मेक्सिको और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला होगा। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन

साथ किसी के रहना, लेकिन खुद को खुद से दूर ना रखना। रेगिस्तानों में उगते हैं अनबोए कांटों के जंगल, भीतर एक नदी होगी तो कल कल होगी हलचल। जो प्यारे सदियों के बंधक, अब उनको मजबूर न रखना। साथ किसी के रहना, लेकिन खुद को खुद से दूर न रखना। तो बात बस इतनी सी है कि किसी और के प्यार और उसकी चाहत में खो जाना तब तक ठीक है जब तक आपकी खुद की पहचान न खोने लग जाए। और यकीन मानिए, जो आपको खुद से दूर कर दे वो कभी आपका था ही नहीं। लेकिन हम यानी FM गोल्ड हर पहर, चाहे दिन हो या रात, हर पल है आपके साथ। और हमारा ये साथ हमेशा यूं ही रहे बरकरार, इसी ख्वाहिश के साथ मैं यानी नाज करती हूं आपको नमस्कार।

यहाँ हर सल्तनत है तेरी, हर सुल्तान है तेरा, इधर इंसान है तेरा, उधर भगवान है तेरा, जमीन से आसमां तलक हर जगह गुणगान है तेरा। ये दुनिया चल रही है अब तलक मेरी जान, ये एहसान है तेरा, और तेरे होने से ही तो ये है कुदरत, तो इसकी शान रखा कर, बहलाने वालों को तू ना कहने का ईमान रखा कर, सही है कौन गलत जरा ये पहचान भी रखा कर, और आखिर में बस एक गुजारिश है कि तू अपना ध्यान रखा कर।

कभी कभी सिर्फ एक इंसान आपकी पूरी जिंदगी बदलने के लिए काफी होता है। वो आपको दिखाता है आपकी अच्छाइयां और आपकी गलतियां भी, दोनों को बिना किसी मिलावट के। और आपकी मुलाकात करवाता है वो आपके अंदर के उस इंसान से जिससे तो आप कभी मिले ही नहीं थे। तो जनाब, जिंदगी में कभी कहीं भी कोई ऐसा मिल जाए ना, तो उसे जाने मत देना, क्योंकि उसे आपके लिए आपने नहीं चुना है, बल्कि वो तो एक तोहफा है जो शायद आपकी तारीफ में उस ऊपर वाले ने भेजा है।

देखिए हर रिश्ते में बहस होती है, गलतफहमियां भी होती हैं, कभी-कभी मन भर भी जाता है, and it's completely normal. लेकिन जो लोग सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, वो छोड़ने की नहीं, बल्कि समझने की कोशिश करते हैं. क्योंकि इस दुनिया में कभी कोई रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, और जिसे परफेक्ट होना चाहिए, वो है उस रिश्ते को निभाने का इरादा.

मैं कभी कभी सोचती हूँ उन बातों के बारे में जो रह गई तुम्हारे और मेरे बीच. हम साथ होते तो कितनी बातें करते, है ना? पता है मैं उन बातों को अब किसी और के साथ बांट भी नहीं पाती. लोग मिलते हैं मुझे पर मैं उनसे ठीक से मिल भी नहीं पाती. सुनो, तुम लौट आओ ना किसी बहाने से, क्योंकि मुझे बहुत कुछ बांटना है तुम्हारे साथ.

कल देर तक सोएंगे, ये सोचकर पूरे सप्ताह की थकान उतर जाती है ना? आपके साथ भी होता है ऐसा? पर अफसोस, जिस दिन सोने की आजादी हो उस दिन, खासकर उस दिन, ढंग से नींद कहाँ आती है।

उसकी आंखों से खूबसूरत और क्या ही होगा, उसकी आंखों से खूबसूरत और क्या ही होगा जिससे हमें मोहब्बत है। तो कहना है मुझे तुमसे कि तुम्हारी आंखें कितनी खूबसूरत हैं, ये बयां करने को अगर मुझे लफ्ज मिल जाएं, तो क्या खाक खूबसूरत है तुम्हारी आंखें।

चांद हर छत पे है, सूरज है हर एक आंगन में। नींद से जागो तो कुछ ख्वाब दिखाएंगे तुम्हें। और पूछते क्या हो कि रुमाल के पीछे क्या है। फिर किसी रोज ये सैलाब दिखाएंगे तुम्हें।

तो रूठा रूठा सा लगता है। कोई तरकीब तो बता मनाने की। हम खुद को गिरवी रख देंगे, तू कीमत तो बता मुस्कुराने की।

आंखों की दहलीज पर आकर बैठ गई, तेरी सूरत ख्वाब सजाकर बैठ गई, और कल तेरी तस्वीर मुकम्मल की मैंने, फौरन उस पर एक तितली आकर बैठ गई।

उसी जगह पर जहां कई रास्ते मिलेंगे। पलट के आए तो सबसे पहले तुझे हम मिलेंगे। अगर कभी तेरे नाम पर जंग हो गई तो हम ऐसे बुजदिल के पहले सफ में खड़े मिलेंगे। और अब हम मिलेंगे ठीक 1:10 पर। उससे पहले आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों के किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: Governing Council की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
1: To youth, to working life, to old age.
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया। ये समझौता नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृह मंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
3: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
0: भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सेटेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल नई दिल्ली में वैश्विक विकास शिखर सम्मेलन की आभासी बैठक में भाग लिया। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के नेताओं ने कुशल वैश्विक ढांचे पर आधारित संतुलित विकास को बढ़ावा देने के उपायों पर चर्चा की। सम्मेलन की अध्यक्षता फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने की। भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए श्रीमती सीतारामन ने कहा कि आज परस्पर जुड़ी दुनिया में समृद्धि और चुनौतियां दोनों साझा हैं, लेकिन संघर्षों और अनिश्चितता के परिणाम विकासशील देशों और औद्योगिक एवं तकनीकी पिछड़ेपन का सामना कर रहे ग्लोबल साउथ देशों पर असमान रूप से पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे उबरने में समन्वित वैश्विक कार्रवाई की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत अधिक लचीली, समावेशी और समृद्ध वैश्विक अर्थव्यवस्था स्थापित करने और साझा विकास के साझा समाधान आगे बढ़ाने के लिए सभी भागीदार देशों के साथ मिलकर काम करने को प्रतिबद्ध है। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का वस्त्र बाजार वर्ष 2014-15 में लगभग 8,50,000 करोड़ रुपए का था, जो वर्तमान में बढ़कर 16,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि कृषि के बाद वस्त्र उद्योग देश में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट के पहले मैच में मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला हो रहा है। अंतिम समाचार मिलने तक मैक्सिको एक गोल की बढ़त बना चुका था। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra Modi has said when many major economies are facing uncertainty and economic challenges, India's growth story continues to inspire the world. Chairing the 11th Governing Council meeting of Niti Aayog at Rashtrapati Bhavan in New Delhi, he emphasized the need to further strengthen the nation's resolve towards self-reliance and highlighted the importance of adopting and implementing global best practices, particularly in the renewable energy sector. Mr. Modi said, as India progresses,

मैंने चांद पर कुछ लिखा है, तुम चुपके से पढ़ लेना, तुम कुछ मत कहना, मैं सब समझ जाऊंगी, तुम शाम को याद करना, मैं रात सपने में जरूर आऊंगी, और इन दिनों अपनी ही हरकतों पर हंसी आती है मुझे, बस एक यही तो बहाना है जिस पे हंसी आती है मुझे, और तुम दूर हो या पास ये बात कोई मायने नहीं रखती, मैं देख चुकी हूं खुद को तुम्हारी आंखों में, अब मैं अपने घर में आईना नहीं रखती। और इस बात के साथ मैं यानी नाज करती हूं आपका स्वागत। स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है 1:11:58, और आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं गीत सुहाने, और यहाँ बातों का सिलसिला आगे बढ़े उससे पहले एक शेर और सुनते जाइए कि उसके चेहरे की चमक के सामने सब कुछ सादा लगा, उसके चेहरे की चमक के सामने सब कुछ सादा लगा, आसमां पे चांद पूरा था मगर हमें आधा लगा।

सच है ना कि जब महबूब का साथ हो तो कुछ भी आधा अधूरा नहीं लगता, एक सिर्फ उसके होने भर से सब कुछ पूरा हो जाता है। और दिल से बस यही अल्फाज निकलते हैं कि न चांद की चाहत है न तारों की फरमाइश, न चांद की चाहत है न तारों की फरमाइश, बस हर पल तू मेरे साथ रहे, बस यही तो है मेरी ख्वाहिश।

सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां कि जिनमें उनकी ही रोशनी हो कहीं से ला दो मुझे वो अखियां दिलों की बातें दिलों के अंदर जरा सी जिद से दबी हुई हैं वो सुनना चाहें जुबां से सब कुछ मैं करना चाहूं नजरों से बतियां ये इश्क क्या है ये इश्क क्या है ये इश्क सुलगती सांसें तरसती आंखें मचलती रूहें और तड़पती छतियां

सच ही तो है ये रात ये मौसम सब कुछ बहुत खूबसूरत और प्यारा प्यारा सा हो जाता है जब महबूब का साथ मिल जाता है और यही जज्बात बशीर बद्र साहब क्या खूब बयां करते हैं कि रात आंखों में ढली पलकों पे जुगनू आए ये रात आंखों में ढली पलकों पे जुगनू आए हम हवाओं की तरह जाके उसे छू आए और मेरा आईना भी अब मेरी तरह पागल है आईना देखने जाऊं तो नजर तू आए

कुछ बातें ऐसी होती हैं ना जो हम करते तो किसी और से हैं लेकिन हकीकत में वो बात हम खुद से कह रहे होते हैं। अब जो अगला गीत आप सुनने वाले हैं वो भी कुछ ऐसी ही बात कहता है कि मैंने कब चाहा था कि मुझे चांद सी महबूबा मिले पर सच में जैसी मैंने चाही थी तुम बिल्कुल वैसी ही हो। और ये खूबसूरत बोल लिखे हैं आनंद बख्शी साहब ने, संगीत से सजाया है कल्याण जी आनंद जी ने और बेहद सादगी और मासूमियत के साथ गाया है मुकेश जी ने।

जिंदगी आखिर है क्या? एक मुकम्मल इश्क की तलाश ही तो है। तेरा इश्क है मेरी आरजू, तेरा इश्क है मेरी आबरू, दिल इश्क है, जान इश्क है, और ईमान की जो पूछो तो ईमान इश्क है। साहिर लुधियानवी साहब की ये खूबसूरत बोल, आइए सुनते हैं साल 1960 में आई फिल्म बरसात की रात से एक और बेहतरीन गाना और संगीत है रोशन साहब का।

इतना मजबूर न कर कि बातें बनाने लग जाएं, हम तेरे सर की कसम झूठी खाने लग जाएं। इतने सन्नाटे पिए मेरी समात ने कि अब सिर्फ आवाज पे चाहूं तो निशाने लग जाएं।

ये आवाज आखिर होती क्या है? वो जो किसी एक से किसी दूसरे तक पहुंचती है, तो वो आवाज तो कुछ भी हो सकती है। वो किसी की लिखाई में हो सकती है, वो किसी की बात में हो सकती है, या फिर किसी एहसास में भी तो हो सकती है, या फिर किसी के जज्बात, वो भी तो उसकी आवाज ही हो सकते हैं। गुलजार साहब ने ठीक इसी आवाज का जिक्र इस गाने में किया है दोस्तों, जो अब आप सुनने वाले हैं, और बखूबी उस आवाज को हम सब तक पहुंचाया है लता जी ने। आइए सुनते हैं।

दोस्तों, मोहब्बत इतना नाजुक एहसास है कि जिसमें इजाजत का शामिल होना बेहद जरूरी हो जाता है। हम जब एक दूसरे से प्यार करते हैं तो एक दूसरे पर हक होता है, मगर उस हक को जता देने से अक्सर सब कुछ खत्म हो जाता है। मगर हम अगर याद रखें कि इस हक को कमाया कैसे जाए, तो यकीनन रिश्ता बेहद खूबसूरत और मजबूत हो जाता है। बिल्कुल वैसे जैसे इस गीत में हसरत जयपुरी साहब बोल रहे हैं। फिल्म जंगली का ये बेहद खूबसूरत गीत जो अब आप सुनने वाले हैं, इसमें संगीत है शंकर जयकिशन का और रफी साहब की आवाज वाकई सब कुछ कह जाती है।

इस दुनिया में हम सबसे ज्यादा प्यार किसे करते हैं? ये जानने का सबसे आसान तरीका पता है क्या है? जिसको खोने का सबसे ज्यादा डर हो, बस वही तो है वो। सब कुछ अच्छा है, वो साथ भी है, लेकिन फिर भी दिल में एक डर है कि कहीं वो आंखों से ओझल हो गया तो। इन्हीं जज्बात को सुरों में बांधे कार्यक्रम का अगला गीत अब आप सुनेंगे, फिल्म असली नकली से। शंकर जयकिशन का संगीत, शैलेंद्र के बोल, कानों में मिस्री खोलती मीठी आवाज लता जी की।

ये रात आती है तो आसमां सज जाता है, तारों की महफिल में ये दिल बहल जाता है, दिन की सारी थकान मिट जाती है ऐसे जैसे कोई लोरी गाकर सुला जाता है। तो चलो अब आंखों में कुछ नए ख्वाब सजा लें, इस हसीन रात को गले से लगा लें, कल फिर एक नई सुबह का स्वागत करना है, कल फिर एक नई सुबह का स्वागत करना है हमें मिलकर, आज की रात सब गिले शिकवे भुला दें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया।

0: बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
1: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया। ये समझौता नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृह मंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
2: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
1: भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सेटेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि दुनिया में चल रहे संघर्ष अब क्षेत्रीय सीमाओं से परे पहुंचकर व्यापक स्तर पर नुकसान पहुंचा रहे हैं। फिनलैंड में हर वर्ष आयोजित होने वाले प्रमुख विदेश नीति और सुरक्षा मंच कुलतारंता वार्ता में फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना मारिया बाल्टोनेन और संयुक्त अरब अमीरात की सहायक विदेश मंत्री लाना नुसेबेह के साथ उभरती शक्तियों और नई भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पर चर्चा में उन्होंने ये बात कही। डॉ. जयशंकर ने संघर्षों के दुष्परिणाम कम करने और अनुकूल कूटनीतिक परिस्थितियां निर्मित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के निरंतर प्रयास की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने दोहराया कि भारत के ऊर्जा निर्णय राष्ट्रीय हित से प्रेरित हैं और ये कीमत और उपलब्धता को ध्यान में रख कर लिए जाते हैं। फिनलैंड में कुलतारंता वार्ता से इतर विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर और फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने बदलती भू राजनीतिक स्थिति पर विचार विमर्श किया और अनिश्चित वैश्विक वातावरण में कूटनीति के महत्व पर जोर दिया। प्रवर्तन निदेशालय ने IDFC बैंक धोखाधड़ी मामले में जांच के सिलसिले में हरियाणा के विकास एवं पंचायत निदेशक कार्यालय के तत्कालीन अधीक्षक नरेश कुमार को धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच में IDFC फर्स्ट बैंक में हरियाणा सरकार, चंडीगढ़ प्रशासन और 2 निजी स्कूलों के खातों से 645 करोड़ रुपए की सार्वजनिक धनराशि के गबन का खुलासा हुआ है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को PMLA अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे रविवार तक 4 दिन की ED हिरासत में भेज दिया गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani. The news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra Modi has said when many major economies are facing uncertainty and economic challenges, India's growth story continues to inspire the world. Chairing the 11th Governing Council meeting of Niti Aayog at Rashtrapati Bhavan in New Delhi, he emphasized the need to further strengthen the nation's resolve towards self-reliance and highlighted the importance of adopting and implementing global best practices, particularly in the renewable energy sector. Mr. Modi said, as India progresses towards achieving the vision of Viksit Bharat, the collective responsibility of the center and states becomes even greater. The Prime Minister urged states to focus on one district, one product initiatives and develop export-oriented strategies around it. He also identified defense manufacturing as an emerging sector where India is establishing a distinct identity and encouraged the states to formulate policies to leverage the opportunities arising from its growth. The theme of this year's meeting is Inclusive Human Development for Viksit Bharat at 2047. Briefing media after the conclusion of the Governing Council meeting, Niti Aayog Vice Chairperson Ashok Kumar Lahiri said, the theme covers all

रोशनी से तेरी वहां चांद रूठा बैठा है मैंने तुझे मांगा जब भी टूटता हुआ तारा देखा है तेरे जैसी महक यहां किसी फूल में नहीं यकीन कर मेरा मैंने हर बाग देखा है जी हां चांद अपने पूरे शबाब पर है और आप हैं मेरे यानी नाज के साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और प्रोग्राम चल रहा है रात सुरमई करेंगे ढेर सारी बातें लेकिन पहले ये गीत सुनेंगे जो है फिल्म अनाड़ी से आवाजें लता मंगेशकर और मुकेश जी की संगीत शंकर जयकिशन का और बोल हसरत जयपुरी साहब के

तो बात ऐसी है कि मुझे चांद देखना पसंद है और उसे चांद सा दिखना पसंद है। वो भी अपने दाग नहीं छुपाती, आंखों में काजल, माथे पे बिंदिया नहीं लगाती, होठों को उन्हीं के हाल पे छोड़ देती है। मुस्कुराते ही समाज के सारे बंधन तोड़ देती है। उसे कौन सिखाए सजना सवरना, बदल न जाए इस दुनिया का हाल वरना। मैं खुश हूं, मैं खुश हूं कि वो आईने से अपना हाल नहीं पूछती, ये वो हां नहीं बेफिजूल से सवालों में नहीं उलझती। सोचो अगर वो काजल लगा ले, सोचो अगर वो काजल लगा ले तो एक दफा बस अपने उलझे बाल सुलझा ले तो। ये जमाना अपना रुख न बदल दे, हर कोई उसके साथ न चल दे, ये हवाएं रुक न जाएं कहीं उसे देखने को, ये हवाएं रुक न जाएं उसे देखने को कहीं। मैंने जब से देखा है उसे, मैं हूं बस वहीं, बस वहीं।

मरीज़े मोहब्बत हूँ, एक तेरा दीदार काफी है। मरीज़े मोहब्बत हूँ, एक तेरा दीदार काफी है। हर एक दवा से बेहतर निगाहे यार काफी है।

पत्थर है तेरे हाथ या कोई फूल है, जब तू कबूल है तो तेरा सब कुछ कबूल है। फिर तूने दे दिया है नया फासला मुझे, सर पर अभी तो पिछली मसाफत की धूल है। तू दिल पे बोझ लेके मुलाकात को ना, मिलना है इस तरह तो बिछड़ना कबूल है। तू यार है तो इतनी कड़ी गुफ्तगू न कर, तेरा उसूल है तो मेरा भी उसूल है। लफ्जों की आबरू को यूं गवाओ ना अदीम, जो मानता नहीं उसे कहना फिजूल है।

बहुत गहरी थी रात मगर हम सोए नहीं। बहुत गहरी थी रात मगर हम सोए नहीं। दर्द भी बहुत था दिल में मगर हम रोए नहीं। कोई नहीं हमारा जो पूछे हमसे भी जाग किस लिए रहे हो और किस लिए सोए नहीं।

भी एहसासे मोहब्बत हो तो आ जाना, किसी टूटे हुए दिल की जरूरत हो तो आ जाना। हमारा दिल तुम्हारी याद में दिन रात जगता है, तुम्हारी भी अगर ऐसी ही हालत हो तो आ जाना। जमाना प्यार का दुश्मन तुम्हें आने नहीं देगा, मगर कभी कोई आने की सूरत हो तो आ जाना। तुम अपने दिल के मालिक हो, तुम्हें हम कुछ नहीं कहते। तुम अपने दिल के मालिक हो, तुम्हें हम कुछ नहीं कहते। न जी चाहे तो मत आना, तबीयत हो तो आ जाना।

हिज्र में एक रात ऐसे टाल देती हूँ, हिज्र में मैं एक रात ऐसे टाल देती हूँ, मैं खुद को जैसे सदमे में डाल देती हूँ। क्या तुम्हें सच में लौट के नहीं आना? चलो मैं तुम्हें एक और साल देती हूँ।

मुझे मालूम है तुम रास्ते क्यों भूल जाते हो, तुम्हें हर रास्ते के अंत से डर लगता है। कोई भी रास्ता जो देर तक सीधा चला जाए, तुम्हें लगता है ये भी न पहुंचेगा कहीं, या फिर बंद हो जाएगा आखिर में। तो यही अच्छा है कि कोई मोड़ मुड़ जाए और फिर मिल जाए शायद कहीं।

तुमको पाकर जो मिली उस मोहब्बत का क्या करूं, दिल न फट जाए इतनी खुशी का क्या करूं। मैं न कहती थी कि मैं तरसी हुई हूं प्यार की, लो मोहब्बत हो गई अब दोस्ती का क्या करूं। चांद मेरा है, मेरा है तो बस मुझ तक पहुंचना चाहिए। हर तरफ बिखरी हुई इस चांदनी का क्या करूं, जहन से उतरी नहीं पहली मोहब्बत आज तक। ये जो तुमसे हो गई उस आखिरी का क्या करूं।

चेहरे पर मुस्कान सजा कर रखना यही तो जिंदगी है। गम में भी खुद को संभाले रखना यही तो बंदगी है। क्या रखा है रोकर इस दुनिया को दिखाने में, मुस्कुराकर सब भूल जाना ही सबसे बड़ी दिल लगी है। और तुम्हारी हंसी के पीछे का राज ढूंढती रहती हूं मैं, तुम्हारी हंसी के पीछे का राज ढूंढती रहती हूं मैं, तो बस तुम्हारे मुस्कुराने की आस रखती हूं। रूठना मत कभी जिंदगी के इन थपेड़ों से तुम, तुम्हारी इसी मुस्कान में तो मैं अपनी कायनात देखती हूं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत के विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
1: The topic for the-

0: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
1: भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सेटेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में 158वें नियमित पाठ्यक्रम और 141वें तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए के 4 उम्मीदवार कल आंध्र प्रदेश से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। निर्वाचित उम्मीदवार तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी के बश्यम रामकृष्ण, सना सतीश बाबू और चिंत कयाला विजय तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश हैं। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने और किसी अन्य उम्मीदवार के चुनाव न लड़ने के कारण रिटर्निंग ऑफिसर आर वनिता रानी ने उनके चुनाव की घोषणा की। रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कल कहा कि जैव औषधीय उत्पाद आधुनिक स्वास्थ्य सेवा के भविष्य को आकार दे रहे हैं और इस क्षेत्र में भारत वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनने की ओर अग्रसर है। नई दिल्ली में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचेम द्वारा आयोजित द्वितीय फार्मा शिखर सम्मेलन एवं पुरस्कार समारोह में श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने कहा कि बायोफार्मा शक्ति पहल के तहत वर्ष 2047 तक जीवित जीवों से प्राप्त होने वाले सामग्री से बनाई जाने वाली 100 बायोलॉजिक्स आरंभ करने की योजना है, जो विकसित भारत और स्वस्थ भारत के दृष्टि योजना में योगदान देंगी। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट के पहले मैच में मेजबान मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया है। मैक्सिको के खिलाड़ियों ने शुरुआत से ही खेल पर नियंत्रण बनाए रखा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। Prime Minister Narendra Modi has said when many major economies are facing uncertainty and economic challenges, India's growth story continues to inspire the world. Chairing the 11th Governing Council meeting of Niti Aayog at Rashtrapati Bhavan in New Delhi, he emphasized the need to further strengthen the nation's resolve towards self-reliance and highlighted the importance of adopting and implementing global best practices, particularly in the renewable energy sector. Mr. Modi said as India progresses towards achieving the vision of Viksit Bharat, the collective responsibility of the centre and states becomes even greater. The Prime Minister urged states to focus on one district, one product initiatives and develop export-oriented strategies around it. He also identified defence manufacturing as an emerging sector where India is establishing a distinct identity and encouraged the states to formulate policies to leverage the opportunities arising from its growth. The theme of this year's meeting is Inclusive Human Development for Viksit Bharat at 2047. Briefing media after the conclusion of the Governing Council meeting, Niti Aayog Vice Chairperson Ashok Kumar Lahiri said the theme covers all aspects of life, including health, education and employment. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has participated in the virtual meeting on Global Convergence for Growth Summit from New Delhi. Ministry of Finance in a social media post said that the summit was held to bring together leaders of advanced and emerging economies to discuss ways of supporting a balanced growth anchored in an efficient global framework. French President Emmanuel Macron presided over the summit. During her intervention at the summit representing India, Ms. Sitharaman said that in today's interconnected world, prosperity and challenges are shared, but the consequences of conflicts and uncertainty falls disproportionately on developing countries.

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूँ आज आपके साथ आपकी दोस्त भारती और आप सबका स्वागत करती हूँ कार्यक्रम हमराही में। शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ। गीत है लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में।

रात की खामोशी में जब प्यार की सरगम बजती है तब दिल अपने प्यार के नाम की धड़कनों से महफिल सजा लेता है। मोहब्बत का सबसे सुंदर एहसास वही है जिसमें अपना कोई हर पल दिल के करीब महसूस हो।

प्यार की मीठी शरारतें और यादों की हल्की सी आहट रात को और भी हसीन बना देती है। कभी एक मुस्कान तो कभी एक याद दिल को बेकरार कर जाती है।

सच्चा प्यार किसी तुलना का मोहताज नहीं होता, वह अपने विश्वास और समर्पण से सबसे खास बन जाता है। जिस रिश्ते में अपनापन, वादा, प्यार हो, वह हर खुशी से बढ़कर होता है।

कभी-कभी दिल की अनकहीं बातें ही सबसे गहरी मोहब्बत का एहसास कराती हैं। रात की तन्हाई में यादें वही सवाल पूछती हैं जिनका जवाब सिर्फ दिल जानता है।

प्यार में किए गए सच्चे वादे रिश्तों को उम्र भर की मिठास दे जाते हैं। जो साथ निभाने का वादा करते हैं वे दूर होकर भी दिल के सबसे करीब रहते हैं।

दुनिया में अगर कोई एहसास सबसे पुराना और सबसे नया है तो वो है प्यार ही। मोहब्बत हर दौर में दिलों को जोड़ने वाली सबसे खूबसूरत कहानी बन जाती है।

कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं जो पहली नजर में ही दिल पर अपना नाम लिख जाती हैं। रात की चांदनी में पहली मोहब्बत की यादें आज भी उतनी ही खूबसूरत लगती हैं जितनी पहली बार लगी थी।

और इसी के साथ मैं आपसे ले रही हूँ अनुमति, छोड़े जा रही हूँ आपको कार्यक्रम के आखिरी गीत के साथ। और आप कहीं मत जाइएगा, जी हाँ 4:10 पर फिर से हाजिर होंगी लेकर प्रोग्राम अरुणिमा। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए अनुमति, जल्द मुलाकात होगी, नमस्कार। और गीत के बाद आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: Governing Council की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
1: To youth, to working life, to old age.
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है। खाड़ी क्षेत्र में बदलती

0: राष्ट्रीय अधिकारियों द्वारा जारी सलाहों पर लगातार नजर रखने की सलाह दी है। मंत्रालय ने हितधारकों से कहा है कि वे भारतीय नाविकों से जुड़ी किसी भी घटना की सूचना तुरंत नौवहन महानिदेशालय को दें ताकि तत्काल हस्तक्षेप और समन्वय सुनिश्चित किया जा सके। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से दो दिन के उत्तराखंड दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में 158वें नियमित पाठ्यक्रम और 141वें तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। मणिपुर भाजपा अध्यक्ष अधिकारी मयूम शारदा देवी राज्य की एकमात्र राज्यसभा सीट के लिए निर्विरोध निर्वाचित हो गई हैं। मणिपुर विधानसभा सचिवालय के सचिव और चुनाव अधिकारी ने उन्हें औपचारिक रूप से निर्विरोध विजेता घोषित किया। भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान राज्यसभा सांसद लिशेम्बा संजावोबा का कार्यकाल 21 जून को समाप्त हो रहा है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि 2025-26 में देश में बागवानी उत्पादन लगभग 3,778 लाख टन रहने का अनुमान है। 2024-25 की तुलना में ये 70.39 लाख टन की वृद्धि दर्शाता है। मंत्रालय ने कहा कि फल, सब्जियां, फूल और सुगंधित एवं औषधीय फसलों का उत्पादन बढ़ने की संभावना है। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट के पहले मैच में मेजबान मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया है। मैक्सिको के खिलाड़ियों ने 9वें और 67वें मिनट में गोल कर मैच अपने पक्ष में कर लिया। ये टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani. The news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra Modi has said when many major economies are facing uncertainty and economic challenges, India's growth story continues to inspire the world. Chairing the 11th Governing Council meeting of Niti Aayog at Rashtrapati Bhavan in New Delhi, he emphasized the need to further strengthen the nation's resolve towards self-reliance and highlighted the importance of adopting and implementing global best practices, particularly in the renewable energy sector. Mr. Modi said, as India progresses towards achieving the vision of Said Bharat, the collective responsibility of the centre and states becomes even greater. The Prime Minister urged states to focus on one district, one product initiatives and develop export-oriented strategies around it. He also identified defence manufacturing as an emerging sector where India is establishing a distinct identity and encouraged the states to formulate policies to leverage the opportunities arising from its growth. The theme of this year's meeting is Inclusive Human Development for Viksit Bharat 2047. Briefing media, after the conclusion of the Governing Council meeting, Niti Aayog Vice Chairperson Ashok Kumar Lahiri said the theme covers all aspects of life including education, health and employment. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has participated in the virtual meeting on Global Convergence for Growth Summit from New Delhi. Ministry of Finance in a social media post said that the summit was held to bring together leaders of advanced and emerging economies to discuss ways of supporting a balanced growth anchored in an efficient global framework. French President Emmanuel Macron presided over the summit. During her intervention at the summit representing India, Ms. Sitharaman said that in today's interconnected world, prosperity and challenges are shared, but the consequences of conflicts and uncertainty falls disproportionately on developing countries and the global south. President Draupadi Murmu will be on a two-day visit to Uttarakhand starting today. During the visit, the President will review the passing out parade of 158th regular course and 141st technical graduate course at the Indian Military Academy, Dehradun. Chief Minister of Jammu and Kashmir Omar Abdullah today called on Prime Minister Narendra Modi in New Delhi and discussed a range of key issues concerning Jammu and Kashmir, including the early restoration of statehood, the economic situation and developmental priorities of J&K. Akashwani Jammu correspondent reports that during the meeting, the Chief Minister conveyed the aspirations of the people of J&K for the early restoration of statehood.

एक बार फिर से आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और मैं हूँ आज आपके साथ आपकी दोस्त भारती। समय हो गया है प्रोग्राम अरुणिमा का और शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की चुपके चुपके फिल्म के इस प्यारे से गीत के साथ। गीत को अपनी आवाज़ से सजाया है लता मंगेशकर ने, गीतकार अनंत बख्शी और संगीतकार एस जी बर्मन।

कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं. सुनते हैं अगला गीत फिल्म संसार से एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में. गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल.

अभी आपने गीत सुना फिल्म अनुराग से मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में, संगीतकार एस जी बर्मन। आगे बढ़ते हैं, अगला गीत सुनते हैं फिल्म छैला बापू से मुकेश की आवाज में, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं फिल्म सफर से लता मंगेशकर की आवाज में संगीतकार कल्याण जी आनंद जी गीतकार इंदिवर

और कार्यक्रम को इसी तरह से आगे बढ़ते रहना चाहिए और बढ़ भी रहा है। तो अगला गीत सुनते हैं फिल्म अभिमान से लता मंगेशकर, क्षमा कीजिएगा, किशोर कुमार की आवाज में, संगीतकार एस जी बर्मन, गीतकार मजहू सुल्तानपुरी।

कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, सुनते हैं अगला गीत फिल्म सरगम से मोहम्मद रवि और लता मंगेशकर की आवाज में। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, गीतकार आनंद बख्शी।

जाने से पहले बस यही कहूंगी कि आप कहीं मत जाइएगा, आप बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पे 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं जल्द हाजिर होंगी 5:10 पर लेकर कार्यक्रम भोर सुहानी। और कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत का विकास विश्व को लगातार प्रेरित कर रहा है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ मिला है।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियो रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार उच्चतम स्तर पर सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि नौवहन महानिदेशालय ने प्रभावित जल क्षेत्र से गुजरने वाले भारतीय और विदेशी ध्वज वाले जहाजों पर कार्यरत सभी भारतीय नाविकों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की सलाह दी है। मंत्रालय ने जहाज संचालकों, प्रबंधकों और पोत परिवहन कंपनियों को भी मौजूदा समुद्री सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करने, स्थिति की पूरी जानकारी रखने और सरकार तथा सक्षम अंतर्राष्ट्रीय अधिकारियों द्वारा जारी निर्देशों पर लगातार नजर रखने की सलाह दी है। भारत ने ओमान तट पर

एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। समय हो गया है प्रोग्राम भोर सुहानी का। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त भारती और शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की इस भजन के साथ। भजन है फिल्म भक्ति में शक्ति से, मोहम्मद रफी, दिलराज कौर और उम्मी और उनके साथियों की आवाज़ में।

हे प्रभु, आपकी कृपा ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जब विश्वास ईश्वर पर हो तो हर कठिन राह भी सरल और प्रकाशमय बन जाती है।

पंछी की तरह ऊंची उड़ान भरने के लिए मन को भय और संकोच से मुक्त करना पड़ता है। जो अपने सपनों पर विश्वास करता है उसके लिए आकाश भी सीमित नहीं रहता।

आकाशवाणी इम्फाल ngasi इराय नुमित जुन गितांग तरानी थोई इंग्ले सिंगनी कुंदरुग इंगागी कुंदरे निपान बा सकाप्तले सिंगमा चमापल निफु निपाल हाउसिक अयुकिपुंग मंगा मखाई ताकिपगलुइनना संगाई चैनल की थोड़म संदुक्पा हुजुरी संदुक्चरिबा मेघहस चामा हुम दस्मी